0: वेलकम बैक, हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत। रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ बिल्कुल, रेनू का आपके साथ 7 बजे से 7 यहाँ पर, और बिल्कुल रहेगी आपके साथ 10 बजे तक। वेल, इट इज द मॉर्निंग शो एज वी ऑल नो।
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: कल के दिन में PSI देखा था आपने? देखा था?
1: मस्ती
2: भाई, मस्ती तो है, लेकिन कल तो बड़ी टेंशन हो गई मुझे। कल अगर आपने PSI देखा था, well it came up to 81 in the moderate range central Singapore में, and that was कल दोपहर के टाइम पे। so अगर एयर क्वालिटी और डिटेरियोरेट होने की बात हो रही थी, तो अनहेल्दी रेंज जहां पर 24 घंटे का PSI एक्सीड कर सकता है 100, ये भी बात बोली गई थी। एंड दिस इज द 28 पब्लिक एजेंसीज दैट मेक अप द गवर्नमेंट हेज टास्क फोर्स, दे आर रेडी टू रोल आउट अपनी रिस्पेक्टिव हेज एक्शन प्लान्स, ऐसा भी कल NEA ने कह दिया था ड्यूरिंग द डे। वेल ऑफ कोर्स ड्राई कंडीशंस जो कि हम देख ही रहे हैं एस्केलेट हो रहे हैं, हॉटस्पॉट कंडीशन इन द रीजन, जहां पर हॉटस्पॉट्स हैं, स्मोक प्लूम्स हैं, दे आर ऑब्जर्व्ड ओवर पार्ट्स ऑफ सुमात्रा एंड कालीमंतान इन इंडोनेशिया। और हाल ही में हमने देखा कि स्मोक हेज जो है, मेरी आवाज भी अब देखिए बदल रही बार बार, वेल इट इज बिकॉज ऑफ द साउथ ईस्टर्ली विंड्स, और ये जो हेज होता है वो इस तरफ आने लग जाता है फ्रॉम द हॉटस्पॉट्स इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ सुमात्रा। और ये जो ड्राई कंडीशन है, दे आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन दिस वीक एज वेल, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ हेज और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मिनिस्टर फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरनमेंट ग्रेस फू, उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि ड्राई वेदर इन द कमिंग वीक कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसबाउंड्री हेज इन सिंगापुर शुड बर्निंग इंटेंसिफाई इन कालीमंतान एंड सदर्न सुमात्रा। सो वेल, स्मोक तो हमने देखी है ड्रिफ्टिंग फ्रॉम कालीमंतान टू सरावाक, बट फिलहाल के लिए ये हमारी तरफ जरा नहीं आई है, और ना ही आए तो बेहतर है, नहीं तो मेरी आवाज तो 4 रेंज में चली जाएगी। कोई मानता नहीं है कि मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, बोलते तुम सिंगापुर में इतनी छुई मुई बनती हो, पर अब क्या करें ना, हम फॉरेन बॉडी बन चुके हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: दिल की चोरी होने की चिंता बिल्कुल ना करें, हम है ना कुछ भी ढूंढ के ला देंगे आपको, आप हमें बताइए तो सही।
1: सीरियस हेडलाइंस with a not so serious vibe. Only
0: good morning and on the morning show this is Renuka with you bringing to you news and updates from across the world. Filhal ke liye chalte hain Taiwan. Taiwan ke cabinet is going to be proposing a 16% annual rise in defense spending for 2027 jo ki pehli baar exceed karega $1 trillion Taiwanese dollars which is equivalent to US $31 billion. ऐसा पता लगा है कल ही के दिन में ताइपेई बोल्स्टर्स अपनी मिलिट्री एंड द मूव विल कम एज चाइना विच व्यूज डेमोक्रेटिकली गवर्नड ताइवान एज इट्स ओन टेरिटरी हैज रैम्प्ड अप मिलिट्री एंड पॉलिटिकल प्रेशर ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स टू एसर्ट इट्स क्लेम्स. वेल और ताइपेई जो है वो स्ट्रांगली इस बात को रिजेक्ट करता है. But Taiwan also faces calls from Washington to spend more on its own defense, mirroring pressure from the United States to Europe. And the proposed budget of more than 1.1 trillion Taiwanese dollars, wo August 20th ko unveil kiya jayega, which includes the funding for the Coast Guard veterans and special projects. Aur saath hi mein is saal exceed karega 3% of GDP, aisa pata laga hai. डिटेल फिगर्स फिलहाल के फाइनल कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव होंगे. ताइवान के गवर्नमेंट ने कहा है कि दे आर मेकिंग मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन अ की पॉलिसी प्लेटफॉर्म एंड दे हैव रिपीटेडली प्लेज्ड टू स्पेंड मोर ऑन इट्स डिफेंसेस इंक्लूडिंग डेवलपिंग मेड इन ताइवान सबमरीन्स गिवन द राइजिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना. China's military operates almost daily around Taiwan and holds periodic war games. The last was in late December. China ne saath hi saath mein rapidly modernize karna shuru kiya hai apne armed forces ko with new aircraft carriers, stealth fighter jets and missiles. And in March, China unveiled a rise of 7% in this year's defense spending to 1.91 trillion yuan, which was equivalent to $283.08 billion. Isi ke saath mein hamara अगला कौन सा गाना है नहीं पता कौन सा गाना है, आप बताइए आपको कौन सा सुनना है. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम करीब करीब सिंगल, मेरा फेवरेट गाना है, प्लीज सुन लो.
2: ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दी,
0: फिलहाल मुझे जाने दीजिए, आती हूँ इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप

0: रान हमेशा की तरह जी हाँ, ये टाइम है हमारा आपको बॉलीवुड की खबर देने का इस घंटे का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज द मॉर्निंग शो। सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7। जी बिल्कुल, रेडियो मस्ती 24/7, साथ ही साथ में रेणुका आपके साथ में, और ये वाला शो बिल्कुल मेरा खालिस। बात करते हैं इस समय शाहरुख खान की। यू नो, मेरी आवाज ही बदल जाती है। उन समबडी इज टॉकिंग विद शाहरुख खान, विक्रम कोचर, जी हाँ, जो कि स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे एसआरके के साथ में 2023 की रिलीज डंकी, आपको याद होगी जी वो वाली फिल्म। उसमें ये भी थे, को एक्टर थे शाहरुख खान के। एंड ही सेड दैट जो शाहरुख खान है ना, द किंग खान एज ही वॉज कॉलिंग, ट्रीट्स एवरी को वर्कर विद रिस्पेक्ट, मेकिंग दम फील एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये वाली बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है शाहरुख खान की। ही सेड दैट एसआरके ट्रूली बिलीव्स दैट पूरा का पूरा एक, यू नो, जो कहते हैं ना, गांव चाहिए होता है टू मेक अ मूवी, एंड दैट एन एक्टर इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ, अरे अरे ये कौन बोल गया बीच में। सो व्हेन ही वाज आस्क्ड कि भाई एक बात तो बताइए कि कोई खास एडवाइस मिला कि आपको शाहरुख खान से, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने ना ह्यूमिलिटी सीखी है उनसे, अलग से आके कोई मेरे को ऐसा एडवाइस नहीं मिला। लेकिन ही ऑल्सो, व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग हिम, इट्स अबाउट हाउ ही सपोर्ट्स हिज को एक्टर्स एंड दैट द स्टोरी इज द रियल हीरो, एंड दैट हम तो बिल्कुल एक छोटे से, मतलब जिसे कहते हैं ना, अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट हैं। सो वेल ऑब्वियसली ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक्स एंड द डोंकी फाइट एंड द प्रोजेक्ट विच वॉज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी विच इज डंकी। और इसके साथ में ऑफकोर्स उन्होंने कहा कि इस फिल्म को करते समय उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली समथिंग विच हैज शेप्ड हिम। वेल ऑफकोर्स अगर आपने नहीं देखी है तो दैट इंक्लूड्स तापसी पन्नू, बोमन ईरानी एंड अनिल ग्रोव विद विकी कौशल मेकिंग अ स्पेशल अपेयरेंस, देखिए जाकर। रिलीज हुई थी 21 दिसंबर 2023, एंड ऑफकोर्स सम पीपल लाइक्ड, सम डिडंट। वेल आई वुड से आई क्वाइट लाइक। रंग दे गेरुआ। अब एसआरके की बात हो और एसआरके का गाना न चले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एसआरके तो ऐसा कैसे हम ना करें। सुनते साथ साथ यहाँ पर ये गाना, एंड आई विल बी बैक इन जस्ट अ लिटिल बिट। गुड मॉर्निंग,
1: वी आर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड बॉलीवुड स्टाइल एनीवेयर एनीटाइम।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: All right, welcome back, Radio Musty 24/7 पर आपके साथ हम बिल्कुल यहीं पर अटके हुए हैं और हम तो कहेंगे सुबह 7 बजे से आपके साथ में हैं एंड डेफिनेटली आप सब अपना लॉन्ग वीकेंड मना रहे हैं, लेकिन हमने तो 24/7 कहा है ना, तो बिल्कुल आना ही पड़ता है यहाँ पर. मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज views and a pinch. 8 Singapore Airlines flights to and from Shanghai, jinko schedule kiya gaya tha August 9th and 10th, unko cancel kiya gaya because of weather conditions caused by typhoon Dolphin. Well, khabre de rahe hain aapko flights cancellation ya rescheduling and all that. Of course, these news apart from every other news right now on Radio Musty 24/7, you can check with us. Another 10 Singapore Airlines flights departing aaj ke din mein aur kal ke, that is August 11th, they have also been retimed. And this is the news from the Singapore Airlines. Well, cancelled flights jo hain, wo hain Singapore to Shanghai, August 9th, SQ 828, 830, 832, 836, jo ki kal ho chuka hai. And Shanghai to Singapore, वो भी 831, 33, 35 and 825 जो आज सुबह के लिए थी. और retimed flights जो हैं, आप चेक कर लीजिए. If you're tuned in right now and you have your flights to Shanghai, well, Singapore to Shanghai आज के दिन में 826 जो कि 11:40 AM पर जाती है, 828 at 2:35 PM, 830 to depart at 3:45 PM, 832 to depart at 1:30 PM and 836 to depart at 5:35 PM. और साथ ही में कुछ फ्लाइट्स शंघाई टू सिंगापुर भी इंपैक्ट हुई हैं, विच इज SQ 827, 831, 833, 835 एंड 825. सिंगापुर एयरलाइंस बिल्कुल आपको कांटेक्ट करेगा सभी के सभी अफेक्टेड कस्टमर्स को जो स्केड्यूल से इंपैक्टेड हैं, एंड पैसेंजर्स हु आर अफेक्टेड बाय द कैंसिलेशंस कैन सीक अ फुल रिफंड फॉर द अनयूज्ड पोर्शन ऑफ देयर टिकट्स और रिक्वेस्ट अल्टरनेट फ्लाइट्स. और क्योंकि इस समय सिचुएशन काफी फ्लूइड है, अदर SIA फ्लाइट्स मे बी अफेक्टेड, इसीलिए आप डेफिनेटली चेक करें द फ्लाइट स्टेटस पेज ऑन सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट अगर आपको इस समय कहीं ट्रैवल करना है. ओके, पहुंच मत जाना एयरपोर्ट, वापस आना पड़ सकता है. लेकिन आप मेरी बात थोड़े ना सुनेंगे, थोड़े ना सुधरेंगे आप. रेडियो मस्ती 24/7, वेल वी विश यू सेफ ट्रेवल्स, सो मेक श्योर यू कीप सेफ एंड चेक द डिटेल्स.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

some good news for people who are holding DBS Group K shares. Well, the DBS Group has declared 81 cents in dividends per share for the second quarter of 2026, kyunki uska net profit jo hai for this period has grown 9% on record wealth management income. Kya baat hai bhai? सुबह का असली वेक अप कॉल रेडियो मस्ती 24/7 पर लेटेस्ट डिविडेंड पे आउट जो है उसके अंदर होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 66 सेंस एंड अ कैपिटल रिटर्न डिविडेंड ऑफ 15 सेंस and this payout is expected to cost the bank Southeast Asia's largest by assets about $2.3 billion aur ye leta hai the first half dividend to $1.62 including first quarter's payout of 81 cents DBS ke shares jo hain wo close hue 2.08% higher at 75.08 after hitting a new high of 75.80 और जो ओसीबीसी है उन्होंने वहां के शेयर्स भी दे आल्सो गेन 2.44% एट 29.33 एंड यूओबी रोज 1.2% टू 43.58 DBS ने बनाया एक रिकॉर्ड 3.08 बिलियन नेट प्रॉफिट फॉर द अप्रैल टू जून क्वार्टर अप फ्रॉम 2.82 बिलियन अ ईयर अगो बीटिंग अ $2.87 billion फोरकास्ट बाय एनालिस्ट्स इन अ ब्लूमबर्ग पोल और साथ ही साथ में ये ब्रीफिंग चल रही थी रिजल्ट्स की पिछले हफ्ते DBS की CEO तान सू शान ने ये कहा दैट द बैंक हैज बीन सीइंग वेरी गुड स्ट्रक्चरल ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग इन ताइवान एंड इंडिया साथ ही में शी ऑल्सो नोटेड दैट ताइवान स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन अक्रॉस द सेमीकंडक्टर एंड डेटा सेंटर इकोसिस्टम व्हाइल इंडियाज मिडिल इनकम एंड कंज्यूमर क्लास कंटिन्यू टू एक्सपैंड एंड अंडरपिन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम तो अगर आप टॉप 6 मार्केट्स देखते हैं दुनिया में क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर DBS ग्रुप के बैकयार्ड में कहते हैं कि हांगकांग चाइना ताइवान इंडिया इसीलिए बहुत बढ़िया पोटेंशियल है फॉर द बैंक टू ग्रो फर्दर वेल अगर आपने शेयर्स लिए और डिविडेंड मिला तो बढ़िया और अगर नहीं तो भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्या गाना है मस्त मस्त मैं हूं ना के साउंड ट्रैक से और मैं भी हूं ना आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 मिलती हूँ अगले घंटे स्टे ट्यून्ड

वेलकम बैक, हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत। जी हाँ, नेशनल डे वीकेंड मना रहे हैं आप सभी के सभी, लॉन्ग वीकेंड, और कुछ तो आप में से इस समय ड्राइव बैक कर रहे हैं फ्रॉम मलेशिया, सो वेलकम वेलकम। डेफिनेटली हम तो हर जगह है ना, आपको घर लाने के लिए भी और घर से भेजने के लिए भी। सीरियस हेडलाइंस with a not so serious vibe only on the morning show. Funny thing is everybody thought they'll beat the traffic and then sare ke sare usi traffic jam mein phase hue hain. Khair ho jata hai. But on radio masti 24/7, well what's happening right now, main aapko khabar dene wali hu about what transport minister Jeffrey Siaw said last week, where he said that the Singapore economy, agar हमको थ्राइव करना है तो देन दोनों ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड स्मॉलर लोकल कंपनीज आर सपोज टू बी सक्सीडिंग। वेल, ही वाज जॉइनिंग द डिबेट ऑन अ मोशन मूव्ड बाय डब्ल्यूपी एमपीज, जिसके अंतर्गत एक केस था फॉर व्हाई एमएनसीज एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर इंपॉर्टेंट टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड सिंगापुर हैज टू कम्पीट हार्डर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्क हार्डर टू सपोर्ट द लोकल कंपनीज अमिड द डिफिकल्ट ग्लोबल एनवायरमेंट, ऐसा कहा Minister Jeffrey Siaw, who is also the second minister for finance. He said that we are not in a zero-sum game. In fact, the growth of our local companies and our MNCs mutually reinforce each other. And WP motion, जिसके बीच में proposal कुछ ऐसा था that the house believes in an economic engine driven by dynamic local companies, healthy domestic demand and Singaporeans and Singaporean capital venturing abroad. Siaw ने ये कहा that there is significant difference in how the PAP and WP understand Singapore's economic model. The WP believes the model is imbalanced and needs to be fundamentally reoriented. अब देखने की बात यह है कि कहा जा रहा है कि WP ने पोर्ट्रे किया है सिंगापुर को एज अ प्लेस वेयर एमएनसी क्रिएट वेल्थ एंड देयर इज सम फॉस्टियन बार्गेन वेयर एसएमईज आर हेल्ड डाउन एंड सिंगापुरियंस रिसीव द बेनिफिट्स थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ही सेड क्लियरली आई डिसएग्री विद दिस कैरेक्टराइजेशन। वेल, बढ़िया बात यह है कि एमएनसीज एज वेल एज एसएमईज आर डेफिनेटली इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सिंगापुर्स ग्रोथ। डेस्टिनी, भाई सुनते हैं वाला गाना। शुरू में जरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इट्स नॉइज, बट देन ब्यूटिफुली इट गोज, इट जस्ट सिंक्स, सो मस्ट लिसन टू दिस वन। गुड मॉर्निंग।

सप्ताह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

0: एंड दैट वॉज अ सॉन्ग फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ दे दे प्यार दे टू। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इंडोनेशिया, वहां की खबर क्या है। मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज Views and a pinch. Musty. जी बिल्कुल, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने कहा था दे गोइंग टू टेक ओवर कंट्रोलिंग स्टेक इन द कंपनी ऑपरेटिंग अ US 7.3 बिलियन चाइना फंडेड हाई स्पीड रेलवे। ये खबर दी उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने एंड अ सीनियर ऑफिशियल विद सॉवरेन वेल्थ फंड धनंतरा। गुड मॉर्निंग, द न्यूज फ्रॉम इंडोनेशिया राइट नाउ। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अपॉइंट करेंगे एक एजेंसी को अंडर हिज मिनिस्ट्री टू टेक ओवर 60% स्टेक इन PTKCIC, द कंपनी दैट ऑपरेट्स द बुलेट ट्रेन। द वैल्यू ऑफ द स्टेक वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड। Commercially, it's named Whoosh. The 142 kilometers railway connects Jakarta to Bandung, which is a city southeast of the Indonesian capital. Appointed agency jo hai wo responsible hogi for repaying the project's outstanding loan, but will not use the state budget. ये जो ट्रांजैक्शन है इसको कंप्लीट किया जाएगा एट द एंड बाय मिड सितंबर, ऐसा कहा द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ धनंतरा ने। साथ ही साथ में आपको शायद याद होगा कि अप्रैल में डोनी ने ये कहा था दैट इंडोनेशिया हैड कंप्लीटेड डेट नेगोशिएशंस विद चाइना फॉर द प्रोजेक्ट बट डिड नॉट प्रोवाइड डिटेल्स। द प्रोजेक्ट हैज बीन मायर्ड इन प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग लैंड प्रोक्योरमेंट इश्यूज, पैंडेमिक रिलेटेड डिलेज एंड बलूनिंग कॉस्ट्स। 60% स्टेक जो KCIC में करंटली इट इज हेल्ड बाय अ कंसोर्टियम ऑफ इंडोनेशियन स्टेट companies. It is led by State Railway from PT Kereta Api Indonesia with construction firm PT Vijaya Karya holding a significant share. Well, Chinese state firms 40% to stake abhi bhi continue karengi. Whoa, business news always sounds a little bit heavy, doesn't it? तो चलिए ये वाला गाना सुन लेते हैं, थोड़ा सा loosen up करते हैं। Good morning.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
1: मुझे चांद पे ले चलो,
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
2: रात।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: All right. Well, there is some news from Bollywood, or may I say from India, and the latest celebrity brand valuation report 2025.
2: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन
1: भाई मुझे तो ये भी नहीं पता था ऐसी कोई ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है मतलब हद है मस्ती सो वेल देयर इज अ मेजर चेंज अपेरेंटली द रैंकिंग्स ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड्स पता नहीं इंडिया के है ना इसीलिए हम लोग इंक्लूडेड नहीं है वेल व्हाट हैज हैपेंड कि विराट कोहली वाज इन द टॉप पोजीशन इन 2024 और अब 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसमें शाहरुख खान हैज क्लेम्ड स्पॉट नंबर वन Well, पता नहीं ये कहाँ से हो गया रणवीर सिंह has also moved ahead of विराट कोहली टू secure द सेकेंड पोजिशन mainly ड्यू टू द सक्सेस ऑफ धुरंधर Well, according to this report, Shah Rukh Khan currently ranks number one with a brand value of US$177.9 million. After moving up from the third place in 2024, Ranveer Singh is holding the second position for the second consecutive year. And 2024 mein bhi, he was behind Kohli. But this year, he's behind King Khan. So, ye kaise ho gaya, pata nahi. But his value is US$162.9 million. And Virat Kohli has slipped to the third place with $158.4 million. उसके बाद है सचिन तेंदुलकर who's in the fourth position with the $125.9 million, followed by धोनी with the $115.3 million. आलिया भट्ट पहली लड़की ऑन द लिस्ट एंड शी इज ऑन नंबर 6 हर ब्रांड वैल्यू इज $93.9 million एंड देन देयर इज दीपिका पादुकोण हु इज ऑन द 7th स्पॉट विद $89.2 million. अभी भी इंटरेस्ट है आपको सुनने में तो समझ लीजिए कि उसके बाद है ऋतिक रोशन 8वें नंबर पर 88.9 मिलियन अमिताभ बच्चन इज नंबर 9 विद 80.8 मिलियन अक्षय कुमार कंप्लीट्स द टॉप 10 विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ $80 million. बाकी के लोग हैं रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना सलमान खान रोहित शर्मा करीना कपूर कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी कृति सैनन अनन्या पांडे एंड जसप्रीत बुमराह लेकिन बैक टू शाहरुख खान वेल ही इज रिटर्निंग टू द स्क्रीन विद सिद्धार्थ आनंद किंग एंड उसमें हैं सुहाना खान दीपिका पादुकोण एंड अभिषेक बच्चन एंड इम्पोर्टेंट रोल्स होगी रिलीज December 24th, 2026 को जी हाँ तो आगे का गाना आप सुनिए और वापस आते हैं बहुत ही जल्द और फिर आपको बाकी खबरें देती हूँ गुड मॉर्निंग

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
2: See you, see you, boys.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: And it's time for me to say goodbyes. जी हाँ, यहाँ पर सभी के सभी मुझे घूर के कह रहे हैं, खुद तो आती है, हमें भी बुला लेती है. तो क्या हो गया ना, मतलब अगर आपका काम, आपका पैशन एक ही होता है तो पता थोड़े ना लगता है कि आप काम पे आए हो या आप वाकई छुट्टी मनाने आए हो, है ना. ऑफिस ऑल्सो बिकम्स लाइक अ लाइटर प्लेस, इजंट इट. सुबह का असली वेकअप कॉल. मैं तो वैसे भी कोशिश करती हूँ कि ऑफिस ऑफिस जैसा फील ही ना हो, एज लॉन्ग एज यू गाइस आर वर्किंग, यू डूइंग योर व्हाटएवर यू नीड टू डू एंड यू हैविंग फन, हर चीज आसान लगती है. बट वेल, रेडियो मसी 24/7, जी हाँ, यहाँ पर शोज हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलेंगे आज के दिन भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस इज अ लॉन्ग वीकेंड और नॉट. वीव हैड अवर फिल ओवर द वीकेंड एंड वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड टू बी विद यू अलोंग साइड दिस लॉन्ग वीकेंड एज वेल. और यही लॉन्ग वीकेंड के आने वाला ये वाला हफ्ता तो हमारे लिए वैसे भी और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर हेडेड टूवर्ड्स नाउ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एंड देयरफॉर एवरीथिंग टुगेदर बिकम्स अ सुपर सुपर सुपर exciting. So stay tuned guys to Radio Masti 24/7. Watch our shows on Masti AVI and of course at the same time our social media pe total apna dhyan rakhiyega taki hum aapke saath jude rahe and of course more and more exciting stuff coming your way. All right, Radio Masti 24/7, we are just a call away, 9151896 3 in case you need to reach us. Aap jante acche se ki kuch bhi ho jaye hame aapse be intaha pyar hai. And this is Renuka saying happy National Day once again. Happy birthday Singapore, 61st year of course. And इसी के साथ में यहाँ पर signing off. And बस रहूँगी आसपास, काम ही करूँगी, नहीं तो ये लोग घर चले जाएंगे. Stay tuned.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: आज मंगलयान को इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक मंगल पर स्थापित कर दिया।
3: सोता उड़ मैं ना उड़ उड़ जैसे रॉकेट उड़।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
6: Blues. Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
7: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
8: Check it

0: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.
1: मजार-ए-शरीफ में 2 महीने बाद एक निकाह हो रहा है। उनके निकाह में एक ऐसा आदमी आ रहा है

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर का बर्थडे संडे को था, सेलिब्रेशंस भी हो गए, फ्लैग्स वगैरह वेव हो गए, फायरवर्क्स हो गए, देख लिए, लेकिन मंडे ने कहा, अरे भाई इतनी जल्दी कैसे खत्म, एक दिन और सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो सिंगापुर, कैसे हैं आप? आज का मंडे थोड़ा अलग है ना, मंडे पर मेहरबानी जरूरी है क्योंकि नेशनल डे संडे को होने की वजह से इट्स अ पब्लिक हॉलीडे ऑन मंडे। बाय गॉड, संडे के बाद मंडे को छुट्टी, मतलब बहुत लोगों के लिए तो आज अलार्म क्लॉक बजी ही नहीं होगी। वाओ, पर कोई बात नहीं, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ, आपका हॉलीडे है, मेरा नहीं है। वैसे भी एनडीपी की एनर्जी एक दिन में कहाँ ही खत्म हो सकती है। सिंगापुर का 61st बर्थडे हो चुका है और इस साल का जो थीम था वो भी बहुत ही अमेजिंग था, दैट वाज माजुला सिंगापुर गो बियॉन्ड। तो सेलिब्रेशन के साथ साथ वो फॉरवर्ड लुकिंग स्पिरिट वो तो कंटिन्यूएशन रहेगी ही। एंड एज आई सेड, मेरी छुट्टी थोड़ी है, मुझे तो आना है स्टूडियो में, बिल्कुल एज ऑलवेज अपनी ड्यूटी बजाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। ऑनेस्टली मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस बात से, क्योंकि आज का बोनस मंडे मुझे कभी ना कभी पक्का कोई ना कोई फायदा जरूर कराएगा। हम साथ में स्पेंड कर रहे हैं यार, आप घर पे और मैं ऑफिस में, उससे बेहतर क्या हो सकता है कि नहीं? सिंगापुर की बातें होंगी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बॉलीवुड गॉसिप्स एंड ऑफ कोर्स हमारे प्यारे गाने। तो नेशनल डे वीकेंड का मूड फिलहाल बिल्कुल खत्म मत करिए, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, मैं अपने शो के मूड में हूँ ही। सुनते रहिए मस्ती हैंगआउट, आप सुन रहे हैं मुग्धा को।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

DJ.

मित्रों, अब देश के मशहूर गायक श्री नरेंद्र चंचल अपनी मशहूर और सुरीली आवाज में आपका मनोरंजन करेंगे। श्री नरेंद्र चंचल।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कल रात सिंगापुर का आसमान देखा था, आय हाय हाय। इनफैक्ट कल का आसमान तो सिंगापुर का अमेजिंग था। कलांग बेसिन के ऊपर वो फायरवर्क्स जो हो रहे थे और नेशनल स्टेडियम के आसपास जो लोग गए होंगे, पूरा पूरा सेलिब्रेशन का माहौल था। ऑनेस्टली वाइब भी कुछ अलग होती है। और अगर आप कल एनडीपी के आसपास थे तो एक चीज आपने डेफिनेटली नोटिस करी होगी, क्राउड एंड ट्रैफिक। बाय गॉड, नेशनल स्टेडियम में ना एनडीपी की ग्रैंड रिटर्न और फायरवर्क इस बार कलांग बेसिन के अंदर एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए। मेन जो डिस्प्ले हुआ दैट वाज अराउंड 8:15 PM एंड जिन लोगों के पास परेड की टिकट्स नहीं थे ना, उनके लिए भी सिटी में बहुत सारे व्यूइंग पॉइंट्स थे। तो आई एम श्योर कि जो लोग अंदर नहीं जा पाए, तंजोंग है, कलांग है, कलांग बेसिन है, स्टेडियम, रिवर साइड वॉक। और हाँ, उस ब्यूटीफुल व्यू के पीछे ना बहुत सारी प्लानिंग थी जो काफी सीरियस थी। यू नो, नेशनल स्टेडियम के अराउंड जो सड़कें थी वो 7 AM से लेके 11 PM तक दे वर क्लोज्ड ऑलमोस्ट। तंजोंग जो है ना वहां से, और तंजोंग रू व्यू जो है आफ्टरनून से, वो सब क्लोज कर दिया गया था। बहुत सारे रास्ते थे जहाँ पे, जैसे कि माउंटबेटन रोड था, ये सारे जो है स्टेडियम बॉलीवुड था, वहां पे ट्रैफिक जो डिलेज थे एक्सपेक्टेड थे। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज की इन सबकी इन्फॉर्मेशन ना एडवांस में दी जा रही थी, भेजी जा रही थी, बताई जा रही थी, इंटरनेट पे रेगुलरली अपडेट्स हो रहे थे कि भाई कहाँ जाइए, कहाँ मत जाइए, कहाँ आपको भीड़ मिलेगी, कहाँ ट्रैफिक मिलेगा। सो एनडीपी का जो ये 61st बर्थडे था, नेशनल डे परेड एंड सिंगापुर का 61st बर्थडे, ये किसी भी तरीके से सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी कि लोग इंजॉय भी करें और वो परेशान भी नहीं हो। तो अगर आपने कल ट्रैफिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर लिया हो तो समझ में आ रहा है ना कि प्रिपरेशन इतनी एक्सटेंसिव क्यों होती है, क्यों इतने टाइम पहले से ये सारी बातें होने लग जाती हैं। फायरवर्क की फोटोज भी बहुत सारे लोगों ने ली होंगी, है ना। एक इंटरेस्टिंग टिप, बेस्ट पिक्चर्स नेसेसरी फिनाले में नहीं, फायरवर्क्स की

अरे पोस्ट तो करो यार आप लोग अपने, आपने अगर कोई बहुत अमेजिंग फायर वर्क की पिक्चर लियो हमारे फेसबुक वगैरह पे भेजो, 9151893 पर शेयर करो अगर आपने ये अटेंड किया और आपने इनके फायर वर्क की पिक्स ली है, तो हम भी तो देखें आपने क्या देखा। यस ऑफ कोर्स, भेजो भेजो।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: और जब एनडीपी की बात आई है, नेशनल डे का वीकेंड जो है ना, सिंगापुर में एक नया गेस्ट लेकर के आया। हाउ कैन आई मिस दिस वन। मैंने एक बार बहुत पहले एक मूवी देखी थी रेड पांडा, एंड आई वॉज इन सो मच ऑफ ऑल बिकॉज दैट रेड पांडा वाज सो क्यूट। और उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन हुआ रेड पांडा से। सच में मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे रेड पांडाज के पहले नहीं पता था। उसके पहले मुझे सिर्फ एक ही पांडाज पता थे जो कि सुपर क्यूट होते हैं। आई नेवर न्यू अबाउट रेड पांडाज अंटिल आई सॉ द मूवी। तब मुझे पता लगा सच में रेड पांडाज होते हैं। एंड देन नया गेस्ट, ऑनेस्टली मुझे लगता है इसको देखने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, मांडाई के रिवर वंडर्स में एक नया रेड पांडा इंट्रोड्यूस किया गया और इसका नाम है याफा। नेशनल डे वीकेंड के जस्ट एकदम एंड मौके पर याफा ने अपने नए घर एंड स्पेशली डिजाइन जो उनका एग्जिबिट है ऑफिशियली वहां पे अपना डेब्यू किया। और रेड पांडा को देखकर एक चीज तो समझ में आती है, नेचर को इसे बनाते वक्त ना क्यूटनेस का जो स्लाइडर था थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया था। मतलब नॉट इतना कि वो गोल्ड पांडा जितना क्यूट लगे व्हाइट ब्लैक पांडा, लेकिन ये अपने आप में अनोखा है। छोटा सा फेस होता है, रेडिश ब्राउन फर होते हैं, एब्सोल्युटली फ्लफी टेल होती है। मतलब सिंगापुर में नेशनल डे के वीकेंड पर ये सेलिब्रिटी जो एंट्री मारी है इसने, तूने मारी एंट्री यार दुम बजे घंटी, टंग टंग जोर जोर से बज रही थी, मुझे तो सुनाई देती थी घर तक। अब क्या है ना कि याफा का जो नया होम है स्पेशली उसकी नेचुरल बिहेवियर को सपोर्ट करने के लिए उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो जो विजिटर्स हैं उनको सिर्फ एक क्यूट सा रेड पांडा नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि ये समझने का मौका भी मिलेगा कि रेड पांडास अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में वो कैसे रहते हैं और कैसे वहां मूव करते हैं। क्योंकि यही तो सबका मेन कोर कोशिश यही होती है कि भैया उनको उनके हैबिटेट का फील आए, उनको उनके घर का फील आए। घर का फील बहुत जरूरी है। वैसे भी नेशनल डे के बाद अगर सिंगापुर को एक नया लिटिल स्टार चाहिए था, याफा हैज ऑलरेडी वन द ऑडिशन। भरोसा भरोसा याफा।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Well, NDP तो है, खैर वो तो अभी नहीं जा रहा है, कम से कम हफ्ते भर हैंगओवर रहेगा। लेकिन आजकल बच्चों को होमवर्क दो, होमवर्क का हैंगओवर बच्चों पे बिल्कुल नहीं होता है। पता नहीं होमवर्क बच्चा करेगा या ChatGPT AI, पता ही नहीं लगता आजकल तो। बच्चे तो छोड़ो, हम बड़े भी, इनफैक्ट कई लोग काम खुद करते हैं, AI से करवाते, समझ में नहीं आता। खैर, सिंगापुर में अब टीचर्स को भी AI के साथ ना प्रॉपरली इक्विप्ड किया जा रहा है। बच्चा अगर शेर है तो टीचर को तो सवा शेर ही बनना पड़ेगा ना। अब ये इसलिए ताकि टेक्नोलॉजी क्लासरूम में आपके लिए एक शॉर्टकट ना बन जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लर्निंग को यूजफुल टूल भी बनाना है। सबको पता है कि आते वक्त में किसका जोर चलने वाला है। तो सिंगापुर के सारे प्राइमरी, सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज जो टीचर्स हैं ना, उनको अब 3 कंपलसरी AI ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है वो कंप्लीट करने होंगे। पहला मॉड्यूल है 2026 के एंड तक कंप्लीट करना है, दूसरा 2027 तक, और हर ऑनलाइन मॉड्यूल रफली 30-35 या 45 मिनट्स तक का होने वाला है। ट्रेनिंग में सिर्फ AI कैसे यूज करना है ये नहीं बताया जाएगा, बल्कि एथिकल यूज, सेफ्टी, एज अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस, बिकॉज वो AI है तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि उनको क्या करना है और क्या नहीं, एंड AI का स्टूडेंट्स की थिंकिंग पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी कवर होगा। क्योंकि बच्चे सोचते ही नहीं है, वो सीधा AI के पास जाते हैं और उससे दो जवाब मिलते हैं और उन्हीं दो में अपना दिमाग चला लेते हैं। दिमाग चला ही नहीं रहे, उंगलियां चला रहे, AI चला रहे, दिमाग नहीं चला रहे। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज नील बट्टे सन्नाटा राइट नाउ। इंटरेस्टिंगली MOE का मैसेज ये नहीं है कि हर लेसन में AI घुसा दो। फोकस क्या है, कब AI यूजफुल है और कब स्टूडेंट्स को खुद सोचने देने पर ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। वाओ, दिस इज ब्रिलियंट। फ्यूचर क्लासरूम में टीचर और AI दोनों होंगे, लेकिन थिंकिंग की जॉब अभी भी स्टूडेंट की रहेगी।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi everybody, welcome back. This is me, Mugdha. Monday ki is chutti wale din aap enjoy kar rahe hain Masti Hangout and we have officially entered show ki dusri hour mein. Bollywood mein na release date ka jo announcement hai usually bada simple hota hai. Haan, Friday ko picture aa rahi hai, tickets book kara lo, popcorns le lo, theaters pahunch jao. Lekin, ek film hai jisne kaha, thoda international twist dalte hain and what's the movie? Ramayana. फाइनली रिलीज स्ट्रैटेजी जो है क्लियर हो गई है। नमित मल्होत्रा ने कंफर्म किया है कि रामायण इंटरनेशनल मार्केट्स में 6 नवंबर को रिलीज होगी, लेकिन इंडिया की ऑडियंस वहां पर इसे एंजॉय करेगी 8 नवंबर को। व्हाई? बिकॉज इंडिया में इस दिन है मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। दिवाली का दिन है भाई, थिएटर्स में आप इसको दिवाली के दिन देखेंगे। रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, इस साल दिवाली संडे को है, 8 नवंबर संडे को है। ओवरसीज थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्राइडे रिलीज पैटर्न फॉलो करता है और इंटरनेशनल ऑडियंस को अगर फ्राइडे नवंबर 6 को पिक्चर मिलेगी तो इंडिया को मिलेगी वो दिवाली के दिन संडे को, एग्जैक्टली फेस्टिवल वाले दिन। देखिए पिक्चर छोटी मोटी तो है नहीं। रणबीर कपूर एज राम, साई पल्लवी एज सीता, यश एज रावण, सनी देओल एज हनुमान, रवि दुबे एज लक्ष्मण एंड द स्टार कास्ट गोज ऑन एंड ऑन। नितेश तिवारी हैज डायरेक्टेड द मूवी और म्यूजिक कॉम्बिनेशन तो आप जानते हैं मैसिव है भाई साहब, हैंस ज़िमर एंड A.R. रहमान। और हाँ, रामायण का तो पार्ट 2 भी है, द सागा इज इन 2 पार्ट्स। अगला पार्ट भाई साहब बहुत लंबा टाइम है, दिवाली 2027। अभी तो हम ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं दिवाली के लिए, अब अगले साल और वेट करना पड़ेगा भाई साहब। मतलब इस दिवाली में सिर्फ मिठाई के डब्बे नहीं खुलेंगे, थिएटर के दरवाजे उस एपिक कहानी के लिए खुलेंगे जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है और नहीं है तो होनी चाहिए।

फिल्म रामायणा इन थिएटर्स इंडिया में ऑन 8th of November दिवाली के दिन जब स्वयं प्रभु राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, तभी तो मनाई जाती है दिवाली।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक जानना तो वैसे कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन जब पीसी जोनस का किसी प्रोजेक्ट के साथ नाम आता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ स्पेशल हो ही जाता है ना? ओके, सो स्केल हाई होने वाला है। प्रियंका चोपड़ा जोनस इज नाउ सेट टू शेयर अ स्क्रीन विथ ऑस्कर अवार्ड विनिंग रसल क्रो इन अ न्यू साइफाई जिसका नाम है ब्लू फ्लाई। कोई मुझे पकड़ो, नहीं मेरी कुर्सी को पकड़ो क्योंकि मैं तो बैठी हूँ कुर्सी पर। रोड एंड टेल, इन्होंने प्रीडेटर, स्ट्रेंजर थिंग्स पर काम किया हुआ है। स्क्रीन प्ले डेविड फ्रिजेरियो, विलियम यूबैंक और क्रेल यूबैंक इन्होंने लिखा है। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंट्रीगिंग है। कॉन्गो में ये सेट है जहाँ पे प्रियंका एक ग्रीविंग यूएन ट्रांसलेटर के रोल में है जो एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन जाती है। एंड मिशन है एक ऐसे मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट को रिकवर करना जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वाओ। एंड फिर ऑब्वियसली कहानी सिंपल रिकवरी मिशन से काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, वो तो हम सब समझ ही सकते हैं। फिल्मिंग लेटर दिस ईयर ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इंटरनेशनल सेल्स टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको लॉन्च किया जाएगा। सो प्रियंका का हॉलीवुड जर्नी वैसे भी काफी इंटरेस्टिंग फेज में है इस वक्त। एंड अब रसल क्रो के ऑपोजिट

0: प्रियंका चोपड़ा इंडियन स्टार ग्लोबल स्क्रीन और अब एक इंटरनेशनल ऑस्कर चैप्टर. क्या पता प्रियंका ऐसे करते करते ऑस्कर की सीढ़ी तक पहुंच जाए. जय हो एक बार और.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे पप्पर। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: लो जी, रामायण की बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें, और फेस्टिव सीजन का मूड जब आ ही चुका है तो हर घर में इस बार आ रहे हैं बप्पा, और आने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके घर के आसपास क्या घर बैठे आपको आपके बप्पा मिल सकते हैं। जी जी बांट लेकर आया है आपके फेस्टिव शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। सबसे पहले, अगर आप इस साल गणेश चतुर्थी के लिए गणेश आइडल घर लाना चाहते हैं तो जीजी मार्ट पर आप बुकिंग्स कर सकते हैं, दे आर ओपन। आप अपनी प्रेफर्ड डेट और टाइम चूज कर सकते हैं। 9, 10, 11 एंड 12 एंड 13 सितंबर के लिए आइडल्स आर अवेलेबल। सेकेंडली, प्राइसेस जो है वो $50 से लेकर $120 तक है, और हर आइडल के साथ एक फ्री पूजा किट भी इंक्लूड किया जा रहा है। बुकिंग्स भी अवेलेबल है और वो अवेलेबिलिटी के बेसिस पर ही पॉसिबल होंगी। समझ रहे हैं ना आप? वैसे फेस्टिव सीजन में घर की पैंट्री हमेशा भरी होनी चाहिए। अगर बप्पा घर आ रहे हैं तो लोग भी आएंगे, और जब लोग आ रहे हैं तो ऐसे उनको खाली पेट थोड़ी भेजेंगे, प्रसाद एंड थोड़ा खाना पीना तो चाहिए। सो दे हैव अ वैरायटी भाई, गुलकंद, जामुन हनी, जामुन जूस, बेरी हनी, फॉरेस्ट हनी, अजवाइन हनी, चिया सीड्स, करी लीव पाउडर। ऑफकोर्स आप ये गणपति बप्पा पे किसी को नहीं देंगे, बट हेल्दी रागी बिस्किट्स एंड देन थ्रोट रिलीफ जिंजर टी आप दे सकते हैं, लेमन टी, हिबिस्किस टी, फ्लेक्स सीड्स, सबको हेल्दी चीजें परोसेंगे इस बार, है ना? पापा भी कहेंगे वाह मुझे अच्छे लगे, तुम हेल्दी खाते हो, है ना? तो पापा की तैयारी हो, फेस्टिव गिफ्टिंग हो, घर की एवरीडे ग्रोसरी हो, कुछ भी, जीजी मार्ट इज देयर। आपका पर्सनल ग्रोसर आपकी सेवा में तैयार है। जीजी मार्ट, 432 बैलिस्टर रोड। आप यहां पे जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं फिजिकली, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8085-6577 पे, या फिर मेरे लिए सबसे आसान ggmartonline.com पर ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए। पापा भी आएंगे, ब्लेसिंग्स भी आएंगी एंड पैंट्री भी फुल, क्योंकि जब पापा आएंगे तो कुछ भी खाली नहीं रहता, क्योंकि पापा सबके हाथ भरते हैं, है ना?

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट। हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
0: हाय, एक चीज आपने नोटिस की है, अमिताभ बच्चन जी को इमेजिन करिए, आवाज वही दमदार, अंदाज वही शहंशाह वाला, और पलकों पर वो हल्के से टिंटेड ग्लासेस। ये चश्मा कोई नया स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, बिग बी एज पर बिग बी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, हालांकि एज पर बिग बी वो 25 सालों से अपने टिंटेड ग्लासेस पहन रहे हैं, और अब उन्होंने खुद बताया कि इसके पीछे की वजह क्या है। कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन की रिकॉर्डिंग के वक्त ना अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में काफी बदलाव आए, कोर्स आएंगे ही, और एक बार उनकी टीम के किसी मेंबर ने उनके ग्लासेस का ये जो हल्का पीला टिंट है उसको देखकर कहा कि चश्मा बदलने का वक्त आ रहा है। ओ माय गॉड, लुक हूज टॉकिंग। खैर, पर बिग बी ने बताया कि ये टिंट उन्होंने जानबूझ के रखा है। उनका कहना है कि किसी इंसान की उम्र का असर सबसे पहले कहां दिखता है, आंखों पर। अब आ गए भाई, मैं भी चश्मा लगाती हूँ कभी कभी, जस्ट किडिंग, मैं अपनी मम्मी का चश्मा पहन घूमती थी, मुझे बड़ा शौक है चश्मा पहनने का। खैर, आंखों पर सबसे पहले दिखता है, और वो अपनी आंखों में आने वाले जो चेंजेस हैं उनको थोड़ा कम दिखाना चाहते थे। अब सोचिए, इतने सालों से हम सोच रहे थे कि बिग बी का ये सिग्नेचर स्टाइल है, पर इसके पीछे तो कोई बहुत ही पर्सनल और इमोशनल रीजन था। यही तो मतलब चीजें की खास।

कोई दिखावा नहीं है, कोई बहाना नहीं है, बस अपनी बात साफ तरीके से और तरीके से, दोनों चीजें कैसे करनी है ये उनको पता है।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi everybody, welcome back. एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके उस शो में जिसको हम कहते हैं मस्ती हैंग आउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। दिस इज मी मुग्धा आपके साथ और ये शो का आखिरी आर्ट ऑफ कोर्स। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी बर्थडे पार्टी के लिए ना हम बहुत कुछ बुक करते हैं, 5-star वेन्यूज एंड अ वेरी फैंसी डेकोरेशन, बट एक पापा का दिल कुछ और ही सोच रहा था। Sometimes nothing is important, ना कोई 5-star का celebration, ना venue, ना decorations, कुछ नहीं। बस आपके पिताजी का दिल बड़ा होना चाहिए। So basically what I'm talking about is social media पर एक video viral हो रहा है जो लोगों का दिल जीत रहा है। I'm sure ये आज का नहीं है, ये पहले भी मैंने देखा हुआ है इस video को, पुराना है but now it's viral। ऐसा ही होता है। और ये video क्यों दिल जीत रहा है? एक truck driver father है जिन्होंने अपनी बेटी के birthday को इतना स्पेशल बना दिया कि उसका वर्क प्लेस ही उनकी लिटिल प्रिंसेस का ड्रीम बर्थडे वेन्यू बन गया। कैसे? पापा ने अपने ट्रक को बलून्स और लाइट्स और गिफ्ट से एकदम सजा दिया और जब बेटी ने पूरा सरप्राइज देखा, ओह माय गॉड, उसकी खुशी देखने लायक थी। और यही तो ये वायरल मोमेंट है। वो ट्रक जो रोज काम के लिए सड़कों पर चलता, उस दिन उस एक नन्ही से बच्चे के लिए इट वॉज अ मैजिकल पार्टी वेन्यू, मैजिकल बर्थडे पार्टी वेन्यू। अब किसी ने इस पूरे सरप्राइज को कैमरा में कैप्चर किया, वीडियो सोशल मीडिया पर आया और उसके बाद सबके पास है, सबके घर में है। किसी ने इस पूरे सरप्राइज को जो कि देखा तो लोग लाइक पीपल आर लाइक ओ में है, कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा है। पर सच कहें तो बच्चों को हमेशा महंगे गिफ्ट या लग्जरी वेन्यूज नहीं आ जाते। फिर बच्चों को कुछ भी नहीं आ जाता इन सब में। बच्चों को क्या याद रहता है कि कितने मन से किसने उनके लिए क्या किया, कौन प्यार से आया, किसने उनसे प्यार से बात की, छोटे से पेंसिल बॉक्स पेंसिल ही किसने प्यार से गिफ्ट किया। ये मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में तो हम उनके दिमाग में भरते हैं यार, वो बड़े हो जाते हैं तो खुद समझ जाते हैं। उनको तो दिल से मतलब है और इस पापा ने अपना पूरा ट्रक ही बेटी के नाम कर दिया। दिल क्या चीज है जानम, अपनी जान तेरे नाम करता है। वाह, व्हाट अ सॉन्ग मैन।
2: दिल क्या चीज है जानम, अपनी जान तेरे नाम करता है। दिल क्या चीज है जानम।
1: तो कभी कभी सबसे खूबसूरत सेलिब्रेशन वही होता है जिसमें डेकोरेशन कम और प्यार ज्यादा होता है।
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Have you ever noticed? कुछ लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन माइक्रोफोन जब सामने आता है तो क्या होता है? अब या फिर इतना भी नहीं, you know? तब लगता है जैसे क्या कर लिया मतलब। और कुछ माइक पकड़ते ही ऐसे ही बोलना शुरू कर दो, लगता है कि बचपन से ही कोई बस दे देता हाथ में, फिर पता लग जाता सरपट है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो आवाज है, वो कॉन्फिडेंस है, वो क्रिएटिविटी है, तो बस वी आर हियर टू पॉलिश इट। वही तो उसको जरूरत है पॉलिश की। मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत आपके लिए कर रहा है और आप इसको शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एन आरजे, बेसिकली सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। आप एक प्रेजेंटर बन सकते हैं, आप कॉन्टेंट क्रिएटर बन सकते हैं, इवेंट होस्ट बन सकते हैं, प्रैक्टिकल स्किल सीख सकते हैं, इन सब चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में इन सबसे ज्यादा भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग। ये सब अगर आएगा तो ही आगे का कुछ भी हम सोच सकते हैं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, ट्रेनिंग एक्टिव ब्रॉडकास्टर से मिलेगी और आपको रियल वर्किंग स्टूडियोज एनवायरमेंट का एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो लेवल 1 से शुरुआत करें, बेसिक वॉइस, स्पीच, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रेडियो, पॉडकास्ट होस्टिंग, कम्युनिकेशन, ऑडियंस एंगेजमेंट, ये सब। फिर इंटरमीडिएट में आप आएंगे जहां पे प्रेजेंटेशन, इंटरव्यूइंग, स्टोरी टेलिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, सबके बारे में बात होगी। और एडवांस में लाइव होस्टिंग, सिमुलेशन, स्टूडियो इक्विपमेंट, शो प्रिपरेशन, एडवांस इंटरव्यूज, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ पॉडकास्टर और अ रेडियो जॉकी और अ कंटेंट क्रिएटर। हैंड्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग प्रैक्टिस भी आपको मौका मिलने वाला है। तो तीनों लेवल्स 12-12 घंटे के हैं। लर्निंग्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, आपके स्कूल, वर्क, पर्सनल कमिटमेंट्स के साथ आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। और हर लेवल के बाद प्रैक्टिकल लर्निंग रिव्यू होगा एंड सक्सेसफुल कम्प्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। तो अगर माइक्रोफोन आपको बुला रहा है तो अभी तक आप सिर्फ सुन रहे थे पर आपके बोलने के बारे में आ चुके हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर की डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, द नंबर इज 9151896 3। और आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर अपना एक इंट्रो भी लिखकर भेजें, info@radiomasti.com.sg।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हर कॉलोनी का, हर मोहल्ले का एक ऐसा पड़ोसी होता है, ऐसी आंटी होती है मोहल्ले में जिनको आपके घर की सारी खबर होती है, राइट? किसने किससे लड़ाई की, किसके घर में कौन आया, क्या सीक्रेट चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, सारी फाइल्स आर ऑलवेज रेडी। वो पीडीएफ एक्सेल से मेंटेन करके रखती है। लेकिन कोलंबिया में एक 67 ईयर ओल्ड महिला ने इस नेबरहुड गॉसिप को ना अलग ही लेवल पर ले जाने का काम किया भाई साहब। बिजनेस बना दिया उन्होंने इसको। मिरियम नाम की जो लेडी है, उन्होंने सालों तक अपने मोहल्ले में जो कुछ देखा सुना उसको एक नोटबुक में लिखा। फैमिली फाइट से लेकर के सीक्रेट रिलेशनशिप तक मोहल्ले की पूरी कहानी को ना कागज पे दर्ज कर दिया। और फिर एक दिन सोचा कि इतनी मेहनत से रिसर्च की है, इसको मोनेटाइज क्यों ना कर दे। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने लोगों को अपनी गॉसिप फाइल जो नोट्स हैं पढ़ने के लिए देनी शुरू की और उसके बदले में पैसे लेने शुरू किए। प्राइस भी स्टोरी की जो जूसीनेस है उसके हिसाब से तय हो रही थी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कितने भी पैसों में ले सकते हो। तो कहानी के मुताबिक एक साइड बिजनेस जो है, उन्होंने उससे इतना कमाया कि अपना ड्रीम हाउस खरीद लिया एंड रिपोर्टेडली एक और प्रॉपर्टी भी ले ली। मेरा सवाल है कि इज दिस अ वेरी जीनियस बिजनेस आइडिया? किसी की प्राइवेट लाइफ कुछ ज्यादा ही रिस्क पे आ गई है। थैंक गॉड किताब नहीं छापी है। ये तो कहते भैया मैं तो किताब छाप के रॉयल्टी ले लूंगी, किसी और की प्राइवेट लाइफ को आपने किताब में डाल के रॉयल्टी खुद के नाम लिया। बाय गॉड, दिस इज आल्सो वेरी जीनियस बिजनेस आइडिया।
2: होली होली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक नाम रोड़ा खा जा।
1: मुग्धा तो सी ग्रेट हो, पर मैडम आप तो ग्रेटेस्ट हो यार, प्रोफेशनल गॉसिप क्वीन हो आप तो।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: तक कैसे ले जा सकते हैं?
1: The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ।
3: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
4: तो भाई 3 घंटे कब निकल गए पता लगा? मुझे तो पता नहीं पता। कभी सिंगापुर की बातें हुई, कभी बॉलीवुड की बातें हुई, कभी दुनिया की अजीबो गरीब बातें हुई, और बीच में आपकी कंपनी पूरा शो बन गया। बस फिलहाल मेरी शिफ्ट का तो एंड आ गया है, लेकिन आपके तरफ शाम बाकी है कि नहीं? तो आप जहां भी हैं मूड अच्छा रखिए, थोड़ा मुस्कुराइए। और अगर आज के दिन किसी ने पूछा दिन कैसा गया तो कहना भाई साहब आज मंडे छुट्टी थी। मस्ती हैंगआउट के साथ दिन हमेशा अच्छा ही जाता है, मैं हूं तो बुरा क्या है। सो मैं हूं आरजे मुग्धा और अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। कल की थकान के बाद आज का जो मंडे है, छुट्टी मिली है, उसको एंजॉय करिए। अगले शो में सेम फ्रीक्वेंसी पर सेम मस्ती के साथ सेम मजे करते हुए मैं और आप फिर 3 घंटे स्पेंड करेंगे। और हाँ, मंडे हो या कोई भी दिन, लाइफ में थोड़ा मस्ती रखना इज कंपल्सरी। रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे थे मुग्धा को, और आगे रेडियो मस्ती सुनते रहिएगा। मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। से आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश, योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म। यू सी, ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉन स्टॉप म्यूजिक नॉन स्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
5: रात अकेली है।
6: जोश में रहो।
7: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
8: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: सस्वीकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे.
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी. क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
1: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप.
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
4: I love you, रसना।
3: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali Antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Monday Blues. Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
4: What?
3: Makes you smile, hum along, and feel good. Welcome to Musti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musti 24/7.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
6: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे. पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो। हेलो हेलो जी वेलकम। भाई चेहरे पर स्माइल तो देखो सबके। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम नमस्ते जी हाँ गुड इवनिंग। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस बिल्कुल यहाँ पर शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर काम करने बिल्कुल आ चुकी हूँ। आई नो एवरीबडी इज इन सो मच ऑफ हॉलीडे मोड टिल नाउ। बस अभी दो या कुछ 5 मिनट पहले मैंने अभी फोन रखा, फोन रख के मैं अभी माइक पे यहाँ पर आ रही हूँ। मैं जिससे बात कर रही थी वो अभी फिलहाल वाटर पार्क में अपनी फैमिली के साथ चिल कर रहे हैं। आई वॉज लाइक बट क्या है ना एंटरटेनमेंट बॉस बहुत ही सीरियस बिजनेस होता है। आपको समझ में आया कि जब छुट्टी वाले दिन काम पे आना पड़ता है तो कैसा लगता है। हम उसको वैसा इतना ज्यादा प्रेफरेंस ही नहीं देते। हमें लगता है कि हम तो नॉर्मली अपना मंडे का काम करने आए हैं, सुबह रेनू का आई फिर मुग्धा आई, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। सो फिर ये है आज का माहौल। बट आई एम स्लो ग्लैड टू सी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी हम कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। एटलीस्ट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू डू सो। जब आज देख रहे हैं कि सब एकदम ही बहुत ही ज्यादा चिल्ड आउट मोड में है, बट इट विल डेफिनेटली हिट यू जब आज की आएगी वो रात जब आई थिंक वो संडे को हम लोग को फील होने लगता है, रात को लगता है कि वो दिमाग में ना टू डू लिस्टें शुरू हो जाती है कि ऐसा करना है वैसा करना है। अच्छा जो यहाँ पे है घूमने गए उनकी टू डू लिस्ट में इतना ज्यादा उनको कहते हैं त्रास कहते हैं वो नहीं आएगा, जो वेकेशन से वापस आ रहे हैं है ना, जिनकी कल से वापस से अपने अपने कामों पर अपने रूटीन में लग जाना है वहां पे आएगा असली। बट वहीं पे हम आपके काम आएंगे बिकॉज एक तो हमारे पास तो ऐसी कोई छुट्टी थी नहीं, तो हमने तो अपना काम करते ही रहना है। बट वी विल प्ले नाइस सॉन्ग्स फॉर यू टू मेक थिंग्स बेटर एंड काम थिंग्स डाउन। सो वेल इसी पूरे थॉट के साथ तो चलिए जी एकदम बेफिक्रा होके आज की छुट्टी को जीना है और मुझे बता देना है कि मस्ती वॉइस आपकी चॉइस पे कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप। 5:00 हो चुके हैं 7 मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन।

0: लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर,
2: कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The Morning Show with Renuka, 7 AM Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh Mera.
6: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
7: वो टाइम कितना अच्छा था ना, जब लोगों को जोक्स जोक्स के जैसे लेना आता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं मंत्र आपके साथ यहाँ पर 5 बजकर हो चुके हैं 19 मिनट। छुट्टी मनाने वालों आओ, कुछ अंदर की बात बताई जाए। देखिए लोग हमारे बड़े जो हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़े अलग ही तरीके का था। वो एक दूसरे की हंसी भी उड़ाते थे लेकिन कहते थे नहीं नहीं नहीं सर सर सर सर सर ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ इफ आई गो बैक टू द 90s, सानुदा और उदित नारायण जी के बीच मतलब they were colleagues, right? And they were at the top of their game at that point of time. हाल ही में क्या था कि भाई सानू जो है उन्होंने एक हल्की सी चुस्की चुटकी जिसको कहते हैं ना, हल्का सा मतलब, एक तो लोग भी सवाल ऐसे ऐसे पूछते हैं कि अगला बंदा जवाब दे भी तो कैसे दे, बट देन वेरी लाइट हार्टेडली ही सेड समथिंग लाइक दैट। भाई उदित नारायण जी की किसिंग कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में तो आपको याद ही होगा कि मतलब सर सर सर सर बहुत सारी सरसराती भावना के साथ बह गए थे। सो भाई सानुदा जो है he was just jokingly saying that he has never given or received a kiss from a female fan. So सानुदा made this remark जब कि वो discuss कर रहे थे his female fan following and his equation with उदित नारायण, and उन्होंने ऐसे कहा उस इंटरव्यू में कि नहीं नहीं मेरे को कोई चुम्मा वुम्मा नहीं खाया, ना मैंने किसी को खाया, it's just Bengali way of saying ना खाया। So हम लोग सब कुछ खाते हैं, ना तो मैं चुम्मा दिया ना मैं लिया, मैंने वो सब नहीं किया। सो या इनको आता ही नहीं, इनको होता ही नहीं, अचानक से वो टोन में चली गई मैं। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट हिज इक्वेशन विद उदित नारायण एंड भाई उनकी प्रोफेशनल राइवलरी ड्यूरिंग द 90s जो थी, एंड उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप हैज सिंस इवॉल्वड इनटू फ्रेंडशिप डिस्पाइट जो इंटेंस कॉम्पिटिशन इन दोनों ने अपने अपने करियर में उस टाइम पर फेस किया। भाई ऑफकोर्स 2025 का वो वीडियो जो वायरल हो गया था उदित सर का, एंड देन ही लेटर डिफेंडेंट अपने इंटरेक्शंस में सेइंग दैट इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड द अफेक्शन एंड एक्साइटमेंट ऑफ फैंस ड्यूरिंग हिज लाइव परफॉर्मेंसेस। वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन भाई सर आप फेमस तो हुए थे बीच में, इस टाइम पे फिर वापस से सानुदा ने आपकी आपका जिक्र कर दिया कि हम ना खाया ना खाने देगा। या आई मीन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ये मजाक ले लिया होगा, बट जस्ट इमेजिन किसी और ने ये आज की डेट में ऐसा मजाक कर दिया होता तो फिर होती ना FIR लॉज। बिकॉज यही तो हो रहा है, डोंट यू थिंक सो? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आई थिंक सो। लेट्स गो अहेड एंड प्ले। यहाँ पे दविंदर पाजी जो है उन्होंने मेरे को जो होमवर्क दिया है वो भी मैं जरा देखूं और वो प्ले करने की तैयारी करूं। आप भी अपना गाना रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे 9158963 पर, क्योंकि ये है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, हॉलीडे स्पेशल, नॉट फॉर अस बट फॉर यू।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। वक्त हो चला के सिंगापुर के सड़कों का हालचाल पता कर लेते हैं। हालांकि इट्स अ हॉलिडे बट ऑल द मोर रीजन। 5:33 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। वीकेंड ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन ईसीपी टुवर्ड्स सिटी आफ्टर केपीई टीपीई। अवॉइड करें लेन नंबर 4। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन चुआचुखांग एवेन्यू 4 टुवर्ड्स चुआचुखांग एवेन्यू 3 आफ्टर चुआचुखांग एवेन्यू 1। अवॉइड करें लेन नंबर 1। और एक ब्लैकआउट जो कि हो रखा है एट टेम्पनिस एवेन्यू 7 एवेन्यू 9 अवाले जंक्शन पर। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप इज एट ब्रेक एंड गाने के उस बार आई विल बी राइट बैक ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: fresh. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, musty top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, धीरे धीरे करके सब जो है वो ट्यून इन होते हुए जा रहे हैं, जुड़ते हुए जा रहे हैं। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यस, हॉलिडे। आई नो, ये मूड ही कुछ ऐसा होता है, गंबत क्या ही करे। लेकिन मेरे जैसे भी काफी सारे लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आज हम गए थे, हालांकि मूड काफी लाइट था, लेकिन कोई नहीं, हम काम पे गए थे, हम भी काम पे आए हुए हैं और बिल्कुल आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ खबरों के जरिए टाइगर श्रॉफ भाई। अपनी पे हाइक के चक्कर में ये काफी आज की डेट में हर जगह पे सनसनीखेज। भाई कोई भी अपनी सैलरी बढ़ाता है ना, तो वो उसका थोड़ा सा हो जाता है कि ओ अच्छा। वैसे कितना टाइम हो गया अब टाइगर श्रॉफ मूवी में तो नजर नहीं आए, लेकिन आई एम श्योर दैट ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर गिग्स जहां से जो है इनका क्या कहते हैं रुतबा, वो हाँ वो बिल्कुल बना हुआ है। सो टाइगर श्रॉफ रिपोर्टेडली ही इज चार्जिंग 25 करोड़ फॉर हिज अपकमिंग फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा के साथ। एंड या ये कहा जा रहा है कि काफी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है उनके पहले जितना वो चार्ज करते थे। ये जो अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है, इट्स करंटली बीइंग फिल्म्ड एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ सितंबर। एंड टाइगर श्रॉफ जो है वो जो कह रहे हैं कि देखो ये तो है ही है, फिर एक मूवी है लग जा गले, एंड देन हिटमैन नाम की भी मूवी जो है वो भी पाइपलाइन में है। सो वाइल द फी हाइक रिमेन्स अनकंफर्म्ड मेकर्स के पास से, रिपोर्ट हैज ऑलरेडी जनरेटेड क्वाइट अ बज़ अमंग फैंस एंड इंडस्ट्री के वॉचर्स। बट बस सब यही सवाल पूछ रहे थे, 25 करोड़ सर जी जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड है? बड़ा ही मुश्किल है बताना, है ना? उसके लिए तो काम भी तो देखना पड़ेगा। एंड मूवीज लेट्स सी, मे बी एंड मे बी नॉट, बट दिस इज व्हाट इट इज। वेल फिलहाल चलते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपसे आपकी चॉइस में पूछना चाहती हूँ भाई, छुट्टी वाले दिन क्या गाना, किस गाने के मूड में हो आप बताएं मुझे 9151896 पर। यह है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो।

0: 12 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: मैंने कहा कि थोड़ा सा टीजर तो बनता है इससे पहले कि एक घंटा खत्म हो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रॉप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। मैं ये कह रही थी कि आपने कई सारी ऐसी वियर्ड खबरों में या हमारे मस्ती मैडनेस के खबरों में कभी ऐसा सुना होगा कि जो है सर्जरी चल रही है लेकिन इंसान जो है वो पूरे होश में है, या तो वो कोई अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या तो वो जो है कुछ ना कुछ करता हुआ जा रहा है। बट हाउ डू दे डू इट? इट्स लाइक साइंटिफिकली सोचा जाए, मेडिकली बड़ा एक मिरेकल सा लगता है, बट वो मिरेकल तक ही रहता है जब तक अपना कोई आसपास देखा हुआ जिसको आपने काफी फॉलो कर रखा है उसके साथ भी यही हो, फिर लगता है कि यार ये तो कमाल की बात हो गई। ऐसा ही हमारी इंडस्ट्री के किसी ने किया एंड क्या कमाल किया और क्या कमाल गाते गाते किया। आई मीन आई हैड ओनली सीन इट ऑन अदर्स बट वॉचिंग हिम डूइंग द सेम थिंग वॉज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मैं नाम नहीं बताऊंगी, नाम मैं अगले घंटे बताऊंगी। मैंने कहा कि ये टीजर छोड़ के तो जाना ही जाना है बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू थिंक। ओके, ही इज अ वेरी गुड सिंगर। ओके, एंड अक्सर जो है प्लेलिस्ट में जो है उनके गाने आते रहते हैं। आई नो इट्स वेरी हिंट के नाम पे बहुत ही वास्ट सागर सा दे दिया है मैंने, बट हिंदी सिंगर्स में तो आप सोच सकते हो और जो थोड़े से अप टू डेटेड होंगे तो उनको पता भी होगा किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। यू थिंक अबाउट दैट एंड आई विल बी राइट बैक। अगले घंटे में बताऊंगी कि ये कौन है और कैसे क्या किया उन्होंने। फिलहाल सुबह सुबह आज जब अलार्म नहीं लगाना पड़ा बहुत सारे लोगों को कितना अच्छा लगा होगा। गुड इवनिंग।
2: Drop that.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।

0: टीचर तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
1: पहुंच चुके हैं 6 बजे के उस पार। गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस बिल्कुल यहां पर चलता हुआ जा रहा है। लेकिन चलते चलते यहां पर पिछले घंटे पर मैंने आपसे कहा था कि कोई तो एक सिंगर है जिन्होंने अपने दर्द गाते गाते बयां किया। वैसे भी सिंगर्स जाने जाते हैं कि वो किसी भी तरह का इमोशन जो है वो अपने आवाज और अपने सुर के जरिए लोगों के दिलों को वो महसूस करा पाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सोनू निगम, व्हाट एल्स टू बी एक्सपेक्ट, भाई वो ऐसे ही इतना कमाल का गाते हैं। बट हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई एंड यस, एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया गया है इसके बारे में। द सर्जरी वॉज उनकी उंगली में जो है वो कुछ वहां पर उसके लिए चल रहा था सर्जिकल ट्रीटमेंट, और बीच में एक वो ग्रीन कलर का हॉस्पिटल का कपड़ा नहीं होता वो लगाया हुआ है, एंड इधर जो है सोनू निगम जी गाना गा रहे हैं कि और सोनू निगम इज बिग फैन ऑफ रफी साहब, वी ऑल नो दैट राइट, ह्यूज, एंड वो उनकी तरह गाते भी बहुत बढ़िया है। सो वो गाना गा रहे हैं, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, एंड ही पोस्टेड दिस ऑन सोशल मीडिया जहां पे ही इज सिंगिंग ऑन वन हैंड एंड द डॉक्टर एंड द मेडिकल टीम अराउंड हिम जो है वो दूसरी तरफ उनकी सर्जरी चालू है। या ही माइट लाइक थोड़ा सा क्या काफी सा दर्द हो रहा होगा, बट ही वाज सिंगिंग थ्रू हिज पेन, आई मीन या, बट द एग्जैक्ट रीजन उनका सर्जरी का इट रिमेन्स डिस्क्लोज्ड, बट इतना पता चल रहा है कि उंगली में वो कुछ तो वहां पर उनकी सर्जरी चल रही है। वेल, कुछ नर्व रिलेटेड कंडीशन जो है उन्होंने पहले भी किसी बहुत पुराने अपने लाइव में कहा हुआ था दैट ही हैज़ दिस कंडीशन एंड इट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ लॉट ऑफ MRI एंड CT स्कैन्स, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं। बट ही लव्स म्यूजिक सो मच दैट उनको लगता है कि जब भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनके लिए सिंगिंग बिकम्स इट्स दैट हीलिंग पावर जो है वो उनको उस वक्त गाते गाते, मतलब वो इधर गाना चल रहा है उधर सर्जरी चल रही है। This is how we believe that miracles do happen and these kind of things also do happen. Sonu Nigam talking about him reminds me of exactly this gana. क्योंकि सच्ची में यार जो पसंद है जो अच्छा लगता है वो आज कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
4: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
3: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
4: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
5: गाना बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
6: That is because it is your show, my dear friends. 6:00 हो चुके हैं 17 मिनट। Radio Masti 24/7 Live, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ। और भाई यहाँ पर दो back to back request बिल्कुल line up कर चुकी हूँ मैं। But before I tell who requested and कौन कौन से वो गाने हैं, यहाँ पर जो है कई सारे celebrities के जैसे एक norm और add हो गया है जिनको अपनी personality करनी है protect। See, when we talk about deep fakes and all, आजकल ये चीजें इतनी ज्यादा आम हो गई है। एंड मोर देन दैट, सेलिब्रिटीज जो है उनको अपनी राइट्स और पर्सनालिटी का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा करना पड़ रहा है। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज डन इट, बट जॉइनिंग दैट लिस्ट इज तबू। दैट इज राइट, तबू जो है गेट्स लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम एआई डीप फेक्स। दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने ग्रांट किया है तबू को इंटरिम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड यूज, चाहे उनका नाम हो, उनकी इमेज हो, उनकी वॉइस, फोटोग्राफ्स एंड अदर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग थ्रू एआई जनरेटेड के कंटेंट, डीप फेक्स एंड फेस मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी। जो जस्टिस साहिबा है उन्होंने डायरेक्ट किया है एक मेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग गूगल, मेटा, एक्स एंड रेडिट टू रिमूव एंड डिसएबल एक्सेस टू 150 प्लस URLs, जिनमें ये तो ऊपर ऊपर से है जो पाए गए हैं जहां पे इनका डीप फेक वगैरह यूज किया गया है। एंड दे वर कैरिंग अनऑथराइज्ड एंड लाइक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट रिलेटेड टू तबू। सो सर्टेन प्लेटफॉर्म्स एंड डोमेन जो है सर्विस प्रोवाइडर्स, दे हैव आल्सो बीन आस्क्ड टू डिस्क्लोज सब्सक्राइबर के इन्फॉर्मेशन एंड आईपी लॉग्स वगैरह लिंक्ड टू द अकाउंट और कंटेंट। भाई तबू जो है उन्होंने अप्रोच किया है द कोर्ट अलेजिंग दैट उनकी आइडेंटिटी वाज बीइंग मिसयूज्ड ऑनलाइन थ्रू फेक इवेंट बुकिंग अकाउंट्स एंड अनऑथराइज्ड मर्चेंडाइज बेचे जा रहे हैं, फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एआई जनरेटेड एंड मैनिपुलेटेड ऑब्सीन कंटेंट जो है वो फैलाए जा रहे हैं जिनसे उनका बिल्कुल कोई नाता रिश्ता नहीं है। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दीज पर्सनैलिटी प्रोटेक्शन राइट्स आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एनी सेलिब्रिटी आउट देयर। नॉट ओनली दैट, सेलिब्रिटी जो है आम इंसान के लिए भी आजकल कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है, इंक्लूडिंग मी। आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट देयर ऑन सोशल मीडिया, हाउ टू कीप अ ट्रैक व्हाट्स हैपनिंग देयर अनलेस समथिंग सडनली कम्स इन फ्रंट। नहीं सोचो तो कभी कभी ऐसा ही लगता है। वेल नहीं, हॉलिडे वॉलिडे टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल जो दो रिक्वेस्ट बैक टू बैक लाइंड अप है, नेहा की रिक्वेस्ट फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह, अ ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक, फॉलोड बाय श्रेया की रिक्वेस्ट विच इज क्वाइट सेंटिमेंटल फ्रॉम द मूवी लव आजकल। दोनों बिल्कुल आप दोनों के लिए, और बाकी किसी को सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है 9158963 के दरवाजे आपके लिए बिल्कुल खुले हैं। गुड इवनिंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7। यहाँ पर 6:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। ट्रैफिक का अपडेट इस घंटे चलिए साथ साथ पे लेते हैं। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन डन ऑन रोड टू वुड सिटी आफ्टर क्लेमेंटी रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 3। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE टूवर्ड्स डुआस आफ्टर क्लेमेंटी एवेन्यू 6, और व्हीकल ब्रेकडाउन मिलेगा ऑन PIE towards Changi after Lonnie Road. Yeah, that's Ganteka traffic update coming up next after two back-to-back requests is a mini request. Shafqat Amanat Ali sahab ki awaaz and it's a beautiful song from the movie Ravan. No, it's not Chambak Chalo, it's this one.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला, मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
3: भाई कृषिवल के नट्स तो भाई यहाँ के हमारे ऑफिस वालों के भी सबसे ज्यादा फेवरेट हो रखे हैं। वी हैव ट्राइड इट एंड वी कैन टेल यू, ओ माय गॉड, दे आर अमेजिंग। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं आपके साथ। भाई ऑफिस में भी आजकल सब हेल्दी चीज ही रहती है, क्योंकि क्या तो आपको पता ही है हम लोग आजकल हेल्दी वे ऑफ लिविंग में काफी इन्वॉल्व होते हैं। इतनी मेहनत लगती है, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो फिर जब ऐसी जो है लाइफस्टाइल हम अपना चुके होते हैं तो लगता है कि जो खाओ भाई, अगर आपको मंचिंग का भी मन कर रहा हो, हेल्दी स्नैकिंग का मन कर रहा हो, टेक समथिंग विच इज ऑर्गेनिक, विच इज गुड, बहुत लाइक प्रिजर्वेटिव फ्री, ये सारी चीजों पर ध्यान ज्यादा जाने लगता है। एंड कृषि वर्ल्ड के नट्स फ्रॉम GGMartOnline.com डेफिनेटली दे पास दैट। और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं दैट इफ यू वॉन्ट टू गो एंड सैम्पल फ्यू एंड जाके जो है बिल्कुल ट्राई करना चाहते हैं, तो आप फिजिकली भी जा सकते हैं। भाई फेयर प्राइस का नाम तो आपने ही सुना ही होगा, तो वहां पर NTUC फेयर प्राइस एंड अपेरा का ज्वाइंट रोड शो जो है 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। So between 17th to 23rd August, City Square Mall पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कृषि वर्ल्ड के नट्स जो कि प्रीमियम है, दे आर रिच इन न्यूट्रिशन एंड टेस्ट तो डेफिनेटली है ही है, कोई उसमें आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स नहीं, दे आर रिच इन प्रोटीन, फाइबर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एज वेल, दे आर वेरी मच हाइजीनिकली प्रोसेस्ड एंड पैक्ड एज वेल, तो आप बिल्कुल इंडल्ज इन कर सकते हैं यहाँ पर GGMartOnline के कृषि वर्ल्ड इस ब्रांड के नट्स में। एंड दे आर वराइटी विच यू कैन गो एंड फाइंड आउट, नॉट ओनली द प्लेन सॉल्टेड वंस बट ऑल्सो द यू नो द चिली वर्जन ऑफ इट, एंड देन देर इज दिस असॉर्टेड कैश्यूज विच हैज पेपर चिली सॉल्टेड एज वेल, देर इज ड्राइड क्रैनबेरीज एंड सो मच मोर। तो जाइएगा जरूर सिटी स्क्वायर मॉल में, वहां पर जो है बिल्कुल कृषि वर्ल्ड नट्स ट्राई जरूर करिएगा, एंड देन उसके बाद ऑनलाइन आप बिल्कुल ही ऑर्डर करेंगे GGMartOnline.com।

0: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो।
1: हाँ हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चले। मस्ती बॉयज आपकी चॉइस के सितारों पे ले चले। भाई आजकल जेन जी के उधर बिल्कुल छाया हुआ है। कौन? हमारे रवि किशन भैया। भाई ऐसा तो उनकी इतनी ज्यादा कभी इस तरह से बात नहीं हुई, लेकिन हाल फिलहाल में जेन जी ने जब उनका मीम बनाया और उनको कर दिया वायरल, सो आई थिंक ही इज ऑल्सो कम्प्लीटली इंजॉइंग द अटेंशन ही इज गेटिंग एंड फाइंडिंग इट वेरी वेरी कूल। इट हैज बीन हैपनिंग, क्योंकि जब अनुपम खेर एंड खोसला का घोसला की पूरी टीम ने जो है मिलकर वो जेन जी वाला ट्रेंड किया, तो एवरीबडी लाइक इवन द किड्स नाउडेज दे वेंट लाइक ओ माय गॉड दिस इज हिलेरियस। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर काइंड ऑफ trying to get to know Gen Z a little better, unke saath thoda sa ghulna milna chahte hain. Well, Ravi Kishan has officially entered apna viral meme era. Ye jo hamare politician actor hai, he has unexpectedly become one of social media ka biggest meme sensations at this point of time. Apne iconic expressions, apne unique dialogue delivery style and quirky one-liners, mereko to bahut hi, matlab wo kisi parliament ke session se bahar nikle the aur sare journalist unke aas paas ghoom rahe the and then उनसे कुछ तो सवाल किया गया एंड कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमारा तो मौन व्रत, एंड ही इज टॉकिंग एंड इन इज वेरी फनी स्टाइल, नहीं नहीं हमारा आज मौन व्रत है, तो आज हम कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे आपको। आई मीन इट्स फन। सो वेल, फ्रॉम पहचान टू और पैसा टू हिज नाउ जो वायरल है मनी फॉलोज माय ब्रदर ब्रदर, लाइक द ही सेज इट इन अ वेरी फनी एंड देन यू नो बेटर डू इट मोमेंट्स एंड क्लिप्स फ्रॉम हिज पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज आर बीइंग लाइक एंडलेसली शेयर्ड एंड रीमेक्स्ड एंड टर्न्ड इनटू मीम्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। एंड वो खुद कह रहे भैया मैंने तो ये कुछ भी प्लान नहीं किया था, इट्स जस्ट मी बीइंग मी दैट आई डोंट डू इट, इट हैपेंस ब्रदर। एंड कॉलिंग फिनोमिनन को वो पागलपन बुलाते हैं लाइक इन हिज ओन फनी वे। सो या ही इज कम्प्लीटली एंजॉइंग द अटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम जेन जी एंड कम्प्लीटली गोज टू हिम। भाई बीच बीच में होना चाहिए ऐसे मजेदार जो है ताबड़तोड़ भौकाल टाइप चीजें जो है ना। आई लव यूजिंग दीज वर्ड्स बिकॉज आई डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू यूज दीज कनपुरिया वर्ड्स एनीवेयर। सो जब जब हमारे ऐसे लोग आते हैं रवि किशन भैया टाइप, हमारे अंदर का कानपुर भी बिल्कुल जाग जाता है। हालांकि वो कानपुर से नहीं है, लेकिन हमारा यू नो रिश्ता नाता कुछ ऐसा ही करीबी वाला है। वेल, इसी के साथ साथ चलिए अगले रिक्वेस्ट की तरफ भी यहाँ पे बढ़ कर जाते हैं। और यहाँ पे बहुत दिनों बहुत तबसुम हैज ट्यून्ड इन एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव। भाई छुट्टी वाले दिन लगता है काफी बिजी रहती हो, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग 90s वाले गलियारे में। चलिए चलते हैं, गुड इवनिंग।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live. 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो।
1: पहुंच गए हैं 7 बज गए उस पार रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं अंतराब के साथ और यहां पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। भाई यहां पे जो है किसी का रिक्वेस्ट तो आया है। पहले तो सपना आंटी के लिए मैंने ऑलरेडी सपना आंटी गाना यहां पे तैयार रख दिया था कि मैं प्ले करूंगी मैं उनके लिए। बट वेल आई कैन सी योर रिक्वेस्ट एज वेल एंड एक्चुअली मैं हम दोनों के एक्टर्स तो सेम निकले रिक्वेस्ट में, बस गाना थोड़ा सा अलग अलग हो गया। बट anyways I can play both of them for you because bhai aaj to sirf aur sirf listeners ki chalegi but usi ke sath sath baki sari khabrein aur updates bhi to milte rehna chahiye bhai ek cinematic milestone jo hai it is on its way ss rajamouli naam to aapne suna hi hoga I mean sanjay leela bansali and now ss rajamouli hum log ye wale naam ek hi saans mein lete hain because bade hi detail oriented directors hai ye so ss rajamouli jo hai unhone reveal kiya hai that his upcoming film varanasi bhai hamari priyanka chopra hai is movie may will become the first non-English film okay to be shot entirely in IMAX that is right ye share karta hai ek exciting production update इस फिल्म मेकर जो हमारे हैं उन्होंने कहा और कंफर्म भी किया है दैट 80% ऑफ द शूट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हैज ऑलरेडी जनरेटेड मैसिव मैसिव बज विद फैंस ईगरली वेटिंग टू विटनेस रजामौली सर का ग्रैंड विजन ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल। भाई एंटार्क्टिका जाकर इन्होंने शूटिंग की है एंड अपेरेंटली दैट particular bit of the shoot and the video is completely insane. It is going to blow our minds away. There has been so much talks about this project Varanasi that I am really curious. Okay, I have recently apne aapko dekha hai. I have started appreciating the cinematography of various films a lot. And if there is a good one, I definitely point it out. Jaise Odyssey jab maine dekhi abhi haal hi mein and I was blown away by the cinematography ki main baat kar rahi hu. Baki kahani and the pace of the show, I found it a bit slow for my taste, but then it was good. Christopher Nolan is amazing. Unka vision was amazing and the way he portrayed that vision was absolutely amazing. So well, same way, let's see what SS Rajamouli sir is kind of preparing for us. Aur kitni tareefa karun main? Karun bhai do tarike se tareefa karungi. Ek tareefa jo hai wo thoda modern tarike se aane wali hai aapke kaano tak, and following that Sapna aunty another tareef aayegi lekin retro style mein. That is my pick for your request and your pick of your request wo bhi karenge lekin ab se kuch hi der mein.

0: 12 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: 7:17 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ मस्ती बॉयज आपकी चॉइस यहां पर चल रहा है। और क्या क्या चीजों की चॉइसें होती हैं यार, लोग जो है आजकल ट्रेंड फॉलो और अपनी ही कोई भी ओकेजन को यूनिक बनाने के लिए कहीं कुछ भी कर गुजरते हैं। और कभी कभी ये हादसा अपने आप ही नॉर्मली इन चीजों में हो जाता है। तो भाई एक कहानी जो काफी वायरल हो रही है एंड इट इज क्वाइट स्कैरी, दो आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब एकदम आस पास कोई नजर नहीं आ रहा है। बट एक कपल की प्री वेडिंग फोटोशूट जो है वो ये लोग बाली कराने गए थे, ठीक है। एंड जो फोटोग्राफर ने क्लिक किया और जो उसने सामने लाया और जो वो कपल ने शेयर किया तो वो वायरल हो गया। सो वेल, बाली बेस्ड फोटोग्राफर जो है उन्होंने ये फोटोशूट किया था एंड द ओपनिंग इमेज जो है जो उन्होंने किया और उसको लगाया रादर देन मेकिंग इट फील लाइक ओ हाउ स्वीट हाउ ब्यूटिफुल, इट गेव देम द फ्राइट ऑफ देयर लाइफ। सो द शूट वॉज फॉर दिस कपल कॉल्ड टेडी एंड स्टेफनी एंड जो है एक स्ट्रीट पर बाली इंडोनेशिया में उनको ये एक चीज करनी थी। नाउ द ओपनिंग इमेज शोड दिस पेयर ऑफ फीट, ठीक है। अब आप सोचो एक एली है ना, एली से ये दोनों कपल जो है ना वो चलते हुए आ रहे हैं और इस बंदे को फोटो खींचनी है, लेकिन बंदे ने फ्रेमवर्क कुछ ऐसा रखा कि ऊपर से दो टांगे लटक रही है, ठीक है। एंड द कपल इज काइंड ऑफ वॉकिंग इन द बैकग्राउंड एंड दोज फीट आर विजिबल। तो बेसिकली कोई तो वर्कर थे जो सीढ़ी लेके वहां पे काम कर रहे थे वाइल दे वर वॉकिंग एंड कमिंग टूवर्ड्स द फोटोग्राफर, बट फोटोग्राफर ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में वो पैरों को फ्रेम रखते हुए उन कपल की फोटो खींची और उसको ओपनिंग इमेज बना दिया। भाई फॉर वेल वायरल रीजंस के लिए तो उन्होंने किया नहीं था, बट वायरल हो गया एंड आई थिंक I'm hoping the couple is happy with the whole scenario at this point of time, but it's so scary. Aapka wedding shoot mein upar se do taange latak rahi hai, like it will just not sit with me at any given point of time. Nahi, I don't know, but well, it is what it is. Hota hai bhai, ye sari cheeze aajkal log viral hona kafi pasand karte hain. Yeah. ये भी एक उतनी ही बड़ी सच्चाई है। बट हैविंग सेड दैट भाई, हमारे दविंदर पाजी जो है मैं बहुत देर से मैं उनको ढूंढ रही थी कि कहाँ गए, बट आई एम गोइंग टू प्ले हिज रिक्वेस्ट राइट हियर राइट नाउ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अनदर रेट्रो वन फॉर यू कमिंग योर वे। दविंदर पाजी, आई होप यू आर ट्यून्ड इन।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: कभी कभी आपके साथ कुछ ज्यादा ही सिंक में आ जाते हैं हम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव भाई अंतरा यहाँ पे आपके साथ, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में। 7:30 बजने वाले हैं स्टूडियो क्लॉक में। ये लो बातें करते करते बच गए यहाँ पर। और इस वक्त ट्रैफिक अपडेट कुछ ऐसा कहता है, व्हीकल ब्रेक डाउन आपको मिलेगा ऑन SLE टूवर्ड्स PKE आफ्टर TPE। व्हीकल ब्रेक डाउन की खबर ऑन डन अर्न रोड टूवर्ड सिटी आफ्टर क्लेमेंटी रोड, अवॉइड करे लेन नंबर 3। सो दैट वॉज दैट। एंड यस, इट्स मंडे इवनिंग, आपकी छुट्टी वाला इवनिंग, सो इट विल फील लाइक अ little bit of Sunday evening वाली feel, और कल लगेगा Monday वाला feel। कल भी हम आ ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो पल यहाँ पे और मिल रहे हैं चंद, उनको भी जी लेते हैं खुशी खुशी गाने सुनते हुए। Good evening।
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
0: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
2: सच अ हार्ट वार्मिंग फीलिंग जब आपने किसी का नाम सुना होता है और बचपन से सुनते हुए आ रहे होते हो, एंड फाइनली यू नो यू ऐसा वो मोड़ आता है कि 40 साल हो गए उनको इस इंडस्ट्री में, एंड यू आर लाइक ओके, उम्र तो हमारी भी हो गई है दोस्त। उस हिसाब से रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूं अंतरा आपके साथ, एंड यस यहां पर चल रहे मस्ती बॉयज आपकी चॉइस। वेटरन एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल, जी हाँ, अब आप इनसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे क्योंकि आपने इनके बेटे को बहुत ही शानदार तरीके के परफॉर्मेंसेस करते हुए देखा हुआ है। विकी कौशल के पिताजी हैं ये, एंड ही हैज कंप्लीटेड 40 ईयर्स इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मार्किंग द माइलस्टोन। भाई श्याम कौशल जो है, बड़ा ही इमोशनल वीडियो उन्होंने शेयर किया रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम उनके हम्बल बिगिनिंग्स इन पंजाब टू बिकमिंग वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्शन डायरेक्टर्स। मैं अपने स्ट्रगल्स याद किए, उन्होंने बड़े कैजुअली वो बात कर रहे थे इस इंटरव्यू में अबाउट लीविंग पंजाब फॉर मुंबई इन सर्च ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप्स ही फेस्ड एंड वाइल ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इस इंडस्ट्री में। उन्होंने ये भी कहा दैट भाई बहुत ही वो ग्रेटिट्यूड सा फील करते हैं टू एवरीवन हु स्टूड बाय हिम ड्यूरिंग द टफेस्ट फेजेस, सेइंग उनका सपोर्ट जो है उनसे उनको बहुत मदद मिली टू ओवरकम एवरी चैलेंज एंड फुलफिल हिज ड्रीम्स। उनका ये जो इमोशनल सा मैसेज है, इट एक्चुअली रेजोनेटेड विद अ लॉट ऑफ फैंस एंड मेंबर्स ऑफ द फिल्म फ्रिटर्निटी जो उनको कंग्रेचुलेट कर रहे थे ऑन कंप्लीटिंग दिस 4 रिमार्केबल डेकेड्स इन सिनेमा। अक्सर मैं अपने दूसरे आई थिंक मस्ती 90s मिक्स टेप शो में मैं ये कहती हूँ कि हम लोग हीरो हीरोइन की बात करते हैं, चलो फिल्म डायरेक्टर के म्यूजिक कंपोजर तक की बात कर जाते हैं, बट देर आर सो मेनी अनसंग हीरोज इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म, बी इट द स्पॉट वाले भैया जो चाय लाते हैं एंड द वन हु काइंड ऑफ रन्स अराउंड एंड कीप्स एवरीबडी हैप्पी जस्ट अपने हाथों के खाने और चाय से सबका जो है ताकि शूटिंग अच्छे से हो जाए, समवन एज अमेजिंग एज देम टू द स्टंट डायरेक्टर्स, कितनी बात करते हैं हम उनकी, बिल्कुल भी नहीं, बट दीज आर द पीपल हु हैव रियली रियली गिवन देयर लाइक ब्लड स्वेट एंड टीयर्स लिटरली टू द मूवीज सो दैट हमें जो स्क्रीन पे दिखे वो रियलिटी से कम ना लगे, है ना। सो कूडोस टू देम, कंग्रेचुलेशंस टू श्याम कौशल सर ऑल्सो फॉर यू नो गिविंग हिज His so much of passion and dedication and hard work, and I think Vicky Kaushal is doing also a fantastic job. मैं अभी एकदम मोहल्ले की ताईजी जैसा डायलॉग आ गया मेरा कि हाँ हाँ बेटा भी तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, हो जाता है हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत से गाने आपका कर रहे हैं इंतजार, बस थोड़ी देर और अगर कोई गाना सुनने का मूड है अभी के अभी बता दो, टाइम है, प्ले हो जाएगा।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

विच मीन्स दैट हंसते गाते गुजर गया ये भी इस समय, अब वापस से कल ट्यूसडे आएगा। मेरे लिए तो नॉर्मल है क्योंकि मैंने तो कल तुम्हें वापस से यहाँ पे हाजिर हो ही जाना है। मस्ती का मंत्र बिल्कुल कल सुबह 5 बजे आपका करूंगी इंतजार। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक हमारे लिए तो हमारे लिए तो नो दैट इज द बेनिफिट। जब आप बिल्कुल हॉलीडे, आपका हॉलीडे लगता ही नहीं है। इट्स जस्ट एनी मंडे ट्यूसडे व्हिच इज यूजुअल जब आपको काम करने जाना होता है, पापी पेट का सवाल होता है एंड एवरीथिंग। बट वेल आई होप यू ऑल हैड अ रियली रियली फैंटास्टिक लॉन्ग वीकेंड एंड नाउ यू आर काइंड ऑफ रिचार्ज्ड एंड रेडी टू वो स्ट्रेंथ जो होती है ना बाकी का झेलने के लिए नहीं बट वी आर ऑलवेज देयर 24/7 आपके लिए। रेडियो मस्ती 24/7 पर फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत एक रेट्रो किशोर दा के गाने के साथ, जो है मैं यहाँ से बिल्कुल टाटा बाय बाय एंड एग्जिट मारती हूँ और आपसे कल मुलाकात करते हैं इन द मॉर्निंग। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।

0: हेलो नमस्कार, स्वागत स्वागत और स्वागत आप सभी का इस बेहतरीन शो में जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। और मेरा नाम है समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। और आज हम एक ऐसे लेजेंड की बात करने वाले हैं जो कमाल के टैलेंटेड थे, जो एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, डायरेक्टर भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, राइटर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे। उफ, एक इंसान में इतना टैलेंट, गजब है भाई। लेकिन ये टैलेंट है कौन भाई? देखिए मुझे तो पता है क्योंकि मैं आज इन्हीं की बात करने वाला हूँ। एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड सिंगापुर? गेसेस कीजिए, क्या कह रहे हैं आप, मैं ही बता दूं। तो चलिए उन्हीं की जुबान ही सुन लेते हैं।
1: ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारो यारियो, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार।
0: हाँ जी, तो ये है संगीत की दुनिया के शहंशाह, द मल्टी टैलेंटेड किशोर कुमार। सिंगापुर एक वक्त था जब 80% हिंदी फिल्मों के गाने किशोर कुमार साहब गा रहे थे, मेल सिंगर्स की मैं बात करूं तो। और आवाज बन गए थे वो बड़े बड़े एक्टर्स की, चाहे वो देव आनंद साहब हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, उनका गाया हुआ एक एक गाना सुपरहिट है। मिसालें दी जाती उनकी। किशोर कुमार बार बार पैदा नहीं होते। यूडलिंग किंग किशोरदा के फैन न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है भाई, बहुत कुछ बाकी है किशोरदा के बारे में बताने को। लेकिन पहले आप ये गाने सुनिए, माहौल बनाते हैं किशोरदा की आवाज में, ये बेहतरीन नगमे आपकी तरफ आ रहे हैं। और इनके बाद हम बातें करेंगे आवाज के इस शहंशाह की। सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स फिर से।

0: Billy, Billy, Billy, Billy.
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स मेरे यानी आपके अपने समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज हम बात करें किशोर दा की। किशोर दा गाते तो बेहद कमाल थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उनकी एक चीज जो सबसे ज्यादा फेमस थी वो थी उनका मजाकिया अंदाज। और ये मजाकिया अंदाज उनका उनकी एक्टिंग में भी झलकता है, जहां वो कमाल की कॉमेडी करते थे। आपको अगर नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ कि किशोर दा का नाम बेस्ट कॉमेडियन में महमूद भाई और जॉनी वॉकर के साथ लिया जाता था।
3: कौन से मुल्क का तरीका है बाल काटने का?
4: जी मुल्क है खंडवा।
3: खंडवा
4: जी, अब आप ये बताइए आप कौन सा कट पसंद करते हैं, अशोक कट, दिलीप कट या राज कट?
2: चाहे वो सुनील दत्त के साथ पड़ोसन हो, चाहे चलती का नाम गाड़ी हो जिसमें तीनों भाइयों अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार ने काम किया था, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान भी वो मजाक करते रहते थे, चाहे वो सीरियस सीन ही क्यों ना हो। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं। एक फिल्म थी पहली झलक, जिसमें किशोर दा के साथ प्राण साहब भी थे। अब प्राण साहब को किशोर दा के पैर पर मारना था और किशोर दा को जैसे उस पर बहुत जोर से लगी है ऐसे रिएक्ट करना था, लेकिन जैसे ही प्राण साहब मारे किशोर दा हंसने लगे। ऐसे करते करते 12 टेक्स हो गए। डायरेक्टर ने कहा प्राण साहब इन्हें समझाइए, तो प्राण साहब बोले आप तो टेक लीजिए और देखिए कैसे टेक पूरा होता है। डायरेक्टर ने जैसे एक्शन बोला इस बार, प्राण साहब ने इस बार फिल्मी लात नहीं मारी बल्कि असली में जोर से किशोर दा के पैर पर मारा और किशोर दा दर्द के मारे चिल्लाने लगे। डायरेक्टर को तो यही चाहिए था। डायरेक्टर बोला परफेक्ट शॉट। ऐसे थे हमारे किशोर दा। सिंगापुर ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे और किस्से हैं मेरे पास इस लेजेंड की जिंदगी से जुड़े हुए, जो आप सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे भी और वाह वाह भी कर उठेंगे। तो चलिए एक काम करता हूँ, इन गानों को सुनवा देता हूँ पहले आपको। किशोर दा की मदहोश कर देने वाली आवाज में कुछ नग में आपकी तरफ आ रहे हैं, इन्हें एंजॉय कीजिए, गुनगुना लीजिएगा साथ में और सुनते रहिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव अपने समर के साथ।
5: अरे

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक ख्वातीनो हजरात, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। और आज हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी पर्सनैलिटी किशोर कुमार की। सिंगापुर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की जोड़ी भी कमाल की थी। इन दोनों ने न जाने कितने ही हिट गाने गाए। हालांकि लता जी की जोड़ी और सिंगर्स के साथ भी थी, जैसे रफी साहब के साथ, मुकेश जी के साथ, लेकिन किशोरदा के साथ उनका रिश्ता अलग ही था, अनोखा था, मजेदार था। लता जी कहती हैं कि वो किशोरदा के सामने गाना नहीं गाती थी क्योंकि वो अजीब अजीब हरकत करते थे जिससे उन्हें हंसी आ जाती थी, इसलिए वो पर्दा लगा देती थी। मतलब किशोरदा और लता जी के बीच पर्दा होता था ताकि लता जी को दिखे ना, वरना लता जी भटक जाएंगी, सुर नहीं लगा पाएंगी, उन्हीं को देखकर हंसती रहेंगी। क्या कमाल के इंसान थे किशोरदा। मुझे नहीं लगता ऐसा इंसान अब कोई पैदा होगा, और आपने भी नहीं देखा होगा। अच्छा, लता जी की पहली मुलाकात किशोर से कैसे हुई, इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। लता जी एक बार ट्रेन से मलाड जा रही थी। मलाड मुंबई का एक सबब है, वहां जा रही थी वो। वहां खेमचंद जी रहते थे, खेमचंद प्रकाश, जो कि एक बड़े मशहूर म्यूजिक कंपोजर थे। उनका स्टूडियो था वहां पर, तो वो वहां जा रही थी उनके स्टूडियो में। तो जिस स्टेशन पर वो थी वहां किशोरदा भी आकर बैठ गए। ट्रेन आई, लता जी उसमें बैठ गई, किशोरदा भी उसी डिब्बे में बैठ गए। लता जी मलाड उतर गई तो किशोरदा भी उतर गए। लता जी ने तांगा किया और उसमें बैठकर चलने लग गई। किशोरदा ने भी एक अलग तांगा किया और उसमें चलने लग गए। अब लता जी को थोड़ा डर लगने लगा कि यार ये भाई है कौन जो पीछा कर रहा है मेरा। वो जल्दी से उतरे और खेमचंद जी के घर में घुस गई और बोली, एक लड़का है जो स्टेशन से मेरा पीछा कर रहा है और यहां तक भी आ गया। इतने में किशोरदा भी स्टूडियो के अंदर आ गए। लता जी ने इशारे में कहा, यही है सर, वो लड़का यही है। खेमचंद जी ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो किशोर है, अशोक जी का छोटा भाई, अशोक कुमार का। तब जाके लता जी को तसल्ली आई। यही दिन था जब लता जी किशोरदा से डरी थी, बाद में तो वो गहरे दोस्त बन गए। पहले इस मजेदार किस्से के बाद एक मजेदार गाना आपके लिए आ रहा है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। ऐसे किस्से किशोरदा से जुड़े मैं लाता रहूंगा। मेरा नाम है समर, सुनते रहिए बस आप।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: क्रिशिवल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
7: Good morning!

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स रेडियो मैसेज 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। और आज की फनकार का नाम है यूडलिंकिंग किशोर कुमार। सिंगापुर किशोर कुमार शुरू से ही टैलेंटेड थे, पढ़ाई में तो वो थे ही, साथ ही म्यूजिक और सिंगिंग की तरफ भी उनका ध्यान था। दादा मुनि यानी उनके बड़े भाई अशोक कुमार साहब ये बताते हैं कि वो हर किसी की कॉपी कर लेता था। उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा कमाल का था और कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा लेता था, मतलब थोड़ी सी कोशिश करता था और उसके बाद वो बजाना सीख जाता था बगैर किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। जब ये छोटे थे तो इनके बड़े भाई या यूं कहिए कि मंझले भाई अनूप कुमार साहब एक यूडलिंग का रिकॉर्ड लेकर आए थे। एक ऑस्ट्रियन सिंगर थे तो वो उनकी नकल करने लगे, मिमिक्री अच्छी कर लेते थे। और केएल सहगल साहब जो उस वक्त के सुपरस्टार सिंगर थे उनके बहुत बड़े फैन थे, सारा जमाना उनका फैन था। तो किशोरदा भी थे, बचपन से उन्हीं के गाने गाया करते थे। जब ये मुंबई आए कुछ बनने के लिए दादा मुनि के पास ये रहते थे, बॉम्बे टॉकीज की कैंटीन में बैठे बैठे कुछ ना कुछ बजाते रहते थे, टेबल बजाते रहते थे और गाते रहते थे मुंह से बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो लोग बोलते थे अरे यार दादा मुनि हीरो है तो क्या तू भी बन जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, दादा मुनि को देखो कितने हैंडसम है। बहरहाल अशोक कुमार क्योंकि बड़े भाई थे और बहुत बड़े स्टार थे उस जमाने के, तो उन्होंने अपनी सिफारिश से एक छोटा सा रोल दिला दिया फिल्म शिकारी में। कुछ गानों में कोरस गा लेते थे किशोरदा, भाई कुछ काम तो करना सीखो। अब आप इमेजिन कीजिए किशोरदा कोरस में गा रहे हैं। भाई टाइम टाइम की बात है, गाना पड़ा। खैर इनको पहला मौका मिला गाने का फिल्म जिद्दी में, जिसमें एक नया नया लड़का था, नाम था उसका देवानंद। अब 1954 में एक फिल्म आई नौकरी, ये किशोरदा के लिए खास थी क्योंकि डायरेक्टर थे इसके बिमल रॉय और संगीतकार थे सलिल चौधरी। फिल्म में किशोरदा को एज अ हीरो कास्ट किया गया। फिल्म का जो मेन गाना है उसे गाने के लिए किशोरदा ने बिमल रॉय से कहा कि ये गाना मैं खुद गाऊंगा, लेकिन सलिल चौधरी ने कहा कि ये कैसे गाएगा यार, ये कोई बाकायदा सिंगर थोड़ी है, इसने कोई ट्रेनिंग वेनिंग ले नहीं रखी है। लेकिन बिमल दा के कहने पर उन्होंने वो गाना गाया और न सिर्फ गाया बल्कि ऐसा गाया कि वो गाना हिट हो गया।
2: छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए।
1: ये था वो गाना। वेल अभी आप किशोरदा के मजेदार गाने सुनिए, मिलते हैं इन गानों के उस पार। मैं हूं समर, रहिएगा यहीं पर रेडियो मसी 24/7 लाइव है ये किशोरदा स्पेशल। लेजेंड्स फिर से सुन रहे हैं आप, कीप लिसनिंग।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: वेलकम बैक, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स और सुनाने वाला है समर। किशोरदा की बातें हो रही हैं आज। किशोरदा जो अपने हर फन मौला अंदाज के लिए जाने जाते थे, हर फन में माहिर। अगर किसी सेट पर वो मौजूद हैं तो हर आदमी एंजॉय करता था जब तक किशोरदा वहां मौजूद रहते थे। स्टूडियोज का भी यही हाल था। उनकी आदत थी कि वो ज्यादातर बात गाकर बोलते थे, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान। जावेद अख्तर साहब बताते हैं कि एक दिन वो स्टूडियो में थे, उन्हीं की किसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुर्सी नहीं थी। इतने में किशोरदा गाते हुए बोलते हैं, अरे मेरी कुर्सी कहाँ है, मेरी कुर्सी कहाँ है। मतलब मजाकिया अंदाज, उनके आने से ना हर किसी के चेहरे पर हंसी आ जाती थी। आशा भोसले जी बताती हैं कि किशोरदा ने अपना एक मानस पुत्र बना लिया था। मतलब वो जब स्टूडियो में आते थे तो जैसे छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर आते हैं वैसे आते थे, जबकि कोई छोटा बच्चा होता नहीं था। मतलब ऐसे इमेजिन कर लेते थे कि एक छोटा बच्चा है मेरे साथ जिसकी मैं उंगली पकड़ कर आ रहा हूँ। और खास बात यह कि उसको सबसे मिलवाते भी थे, बेटा नमस्ते करो, फिर वो खुद ही बच्चे की आवाज में बोलते थे,
5: नमस्ते अंकल।
4: और जब गाना उनको अच्छा नहीं लगता था तो वो खुद न बोलकर बच्चे की आवाज में बोलते थे,
5: मुझे गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अंकल।
4: आशा जी बताती हैं कि कुछ दिनों बाद हमें भी उस बच्चे की आदत सी हो गई थी। मतलब किशोरदा की इन हरकतों से हमारा ब्रेन वॉश हो जाया करता था, ब्रेन फ्रेश हो जाया करता था। वो जैसे ही स्टूडियो में आते हम खुद ही चलकर उनके मानस पुत्र से हेलो करने लग गए। सिंगापुर कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि काश ऐसे इंसान मेरे भी दोस्त होते। किशोर कुमार के बारे में क्या कहा जाए, मतलब इतनी बातें हैं उनकी कि ये टाइम तो काफी है नहीं, महीने बीत जाएंगे लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। तो एक काम करते हैं, बातें चलती रहेंगी, आप इन गानों को एंजॉय कीजिए। वापस आइए समर के साथ, लेजेंड्स फिर से सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए ना।

पे जिस तरह शाम का

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412-320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
2: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, जो है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो. नाउ ऑन द गो. आज हम किशोर दा की बातें कर रहे हैं. यह लेजेंड्स फिर से. उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं. सिंगापुर, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि किशोर दा कई एक्टर की आवाज बन गए थे. शुरू में तो वो खुद सिर्फ अपने लिए और देव साहब के लिए गाते थे, लेकिन बाद में जिनके लिए उन्होंने गाने गाए उनमें से एक नाम है राजेश खन्ना साहब का.

राजेश खन्ना के ज्यादातर गाने किशोर दा ने ही गाए हैं और सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक हिट रहे। कोई सा भी गाना उठाकर देख लीजिए आप। किशोर दा ने देव साहब के रोमांटिक गाने गाने के बाद काका के रोमांटिक गाने भी गाए। एक बार राजेश खन्ना ने बताया कि जब आराधना के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तो किशोर दा एस डी बर्मन से पूछते हैं कि दादा इस फिल्म में हीरो कौन है, तो बर्मन दा ने कहा कि एक नया लड़का है, अभी दो चार फिल्में की हैं उसने। तो किशोर दा बोले पहले मैं उससे मिलूंगा, बाद में गाने रिकॉर्ड करूंगा। तो साहब राजेश खन्ना चले गए किशोर दा के घर। किशोर दा ने ना पानी के लिए पूछा ना चाय के लिए, बस उन्हें बिठाया और पूछने लगे कि क्यों करना चाहते हो यार फिल्में। तो काका ने बोला बचपन से एक्टिंग का शौक है और मैं चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट के थ्रू मैं देश की सेवा करूँ। तो किशोर दा बड़े खुश हो गए और बोले कि अब मैं तुम्हारे सारे गाने रिकॉर्ड करूंगा। और काका बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा चाय लेंगे या कॉफी। मतलब जब तक उनके सवाल का सही जवाब नहीं मिल गया उन्हें, तब तक उन्होंने चाय कॉफी भी नहीं पूछी। तो ये सब किशोर दा के काम की ईमानदारी को दिखाता है। वो चाहते थे कि हर कलाकार अपना काम ईमानदारी से करे, कोई ना कोई मकसद लेकर वो आए इंडस्ट्री में। और ऐसे ही राजेश खन्ना का जब मकसद उन्होंने जान लिया तो उन्हें चाय कॉफी के लिए भी पूछा और उनके लिए काम करने के लिए भी राजी हो गए। फिलहाल मैं भी ईमानदारी दिखाता हूँ और आपको किशोर दा के गाए ये गाने सुनवाता हूँ। आप सुनते रहेगा रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स। फिर से आज किशोर दा की बातें कर रहे हैं हम।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स मेरे यानी समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज हम जिस फनकार, जिस संगीत के बादशाह की बात कर रहे हैं वो हैं किशोर कुमार। किशोर दा मल्टी टैलेंटेड कलाकार थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो हर तरह के काम कर लिया करते थे, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया आपको। सलील चौधरी जो कि एक मशहूर संगीतकार थे, उन्होंने एक बार बताया कि एक फिल्म के गाने रिकॉर्ड होने थे। फिल्म का नाम था हाफ टिकट। मेल सिंगर थे किशोरदा और फीमेल सिंगर थी लता मंगेशकर, लेकिन लता जी उस वक्त कहीं गई हुई थी या किसी वजह से आ नहीं पाई टाइम पर, रिकॉर्डिंग के टाइम पर। तो साहब प्रॉब्लम हो गई कि अब क्या किया जाए, स्टूडियो बुक था। तो किशोरदा ने सलील चौधरी जी से कहा कि मैं फीमेल वाला पार्ट भी गा लूंगा। सलील जी ने कहा, कैसी बातें करते हो किशोर, ऐसा थोड़ी होता है, तुम कैसे गाओगे? किशोरदा बोले, दादा एक बार ट्राई करके तो देखो, मेरे ऊपर विश्वास करो। तो सलील

इंस्टाग्राम कैसा लग रहा है आप हमें बताते रहिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल ये गाने आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं, वहां आकर कौन सा गाना और सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, मैं हूँ समर आपके साथ, कीप लिसनिंग।

0: जुटा निराते ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।
1: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: हेलो एंड वेलकम बैक लेजेंड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक्चुअली लेजेंड्स फिर से रीलोडेड और आप सुन रहे हैं आज किशोर दा की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों किशोर कुमार एक ट्रेंड सिंगर नहीं थे, मतलब कहीं से उन्होंने संगीत की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये उनके अंदर का टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। शुरू में जब वो मुंबई आए तो जब भी वो कहीं गाते थे, किसी ऑडिशन को देने जाते थे, तो लोग कहते थे कि यार तुम केएल सहगल की नकल करते हो, कोई ऐसी थोड़ी सहगल बन जाता है। एक्टिंग के लिए भी लोग बोलते थे कि तुम नहीं बन सकते यार एक्टर। खैर यही सब बातें, ये उल्हाने, ये रिजेक्शंस किशोर दा के अंदर तक घुस गए, अंदर बैठ गए, उनको टीस पहुंचाते थे और उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। एक इंटरव्यू में अभिनेता इफ्तिखार ने कहा था,
3: वो इतना सनकी था नहीं, जैसे प्रोड्यूसर लोग आए या कोई आया और उससे कहते हैं कि साहब किशोर साहब आपके लिए कॉमेडी रोल है। अच्छा भाई क्या है वो कॉमेडी? ये है कि आप लड़की के घर में आते हैं और आने के बाद दो खराबाजियाँ खाते हैं, हैरान। अब लोगों ने इस तरह से उसको कॉमेडियन क्या बल्कि अजीब किस्म का पागल बना दिया। वो होते होते फिर लोग कहने लगे कि साहब ये तो पागल है, वो एक्टिंग भी इसी तरह की करता है, ये करता है, हालांकि वो ऐसा था नहीं।
2: लेकिन किशोर दा ने अपने टैलेंट से सबको जवाब दिया। जिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने उनके स्ट्रगल के दिनों में उनका साथ नहीं दिया था वो अब किशोर दा के आगे पीछे घूमने लगे। और मैं आपको बताऊं, किशोर दा का अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब देने का एक अजीब तरीका हुआ करता था, मतलब वो सीधे मुंह जवाब नहीं देते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार प्रोड्यूसर आया और बोला, दादा मैं चाहता हूं आप मेरी फिल्म में गाना गाओ। अब ये वो प्रोड्यूसर था जिसने कभी मना कर दिया था किशोर दा को, तुम गा नहीं सकते। खैर साहब अब जब वो आए तो किशोर दा ने इस बार उन्हें सीधे मुंह मना नहीं किया बल्कि एक शर्त रख दी, कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म में गाना गाऊंगा लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि यहाँ से दूर वो जो नदी है उसमें तुम दो नाव का इंतजाम करोगे और हम दोनों सफेद धोती कुर्ता पहनेंगे और माथे पे तिलक होगा और तिलक में चावल जरूर होना चाहिए। उसके बाद दोनों का एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरी नाव में होगा। ये अजीब सी शर्त रख दी उन्होंने। खैर प्रोड्यूसर थोड़ा समझदार था, वो समझ गया कि दादा गाना नहीं चाहते। तो दोस्तों ये भी एक टैलेंट ही है कि बिना सीधी बात कहे अपनी बात कह दी और समझ में भी आ गई, जो सिर्फ यूडलिंग किंग किशोर दा ही कर सकते थे। और मैं भी एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको उसी किंग के कुछ गाने सुनवा सकता हूँ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह लेजेंड्स फिर से एंजॉय करते रहिए और वापस आइए, मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। और आज का जो हमारा ये लेजेंड्स फिर से स्पेशल शो है, ये किशोर कुमार पर बेस्ड। आज हम किशोर दा को जी रहे हैं। अभी तक हमने बात की उनके मजाक के अंदाज की, उनकी शरारतों की, उनके टैलेंट की, लेकिन अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो है किशोर दा की लाइव परफॉर्मेंसेस की, जहाँ किशोर कुमार साहब ने दुनिया भर में कई लाइव कॉन्सर्ट्स किए। लेकिन शुरू में वो पब्लिक के सामने जाने से डरते थे, या यूं कहिए शर्माते थे। तो पड़ोसन फिल्म की सक्सेस के बाद सुनील दत्त ने सोचा कि इस फिल्म में म्यूजिक का लाइव कॉन्सर्ट भी होना चाहिए। तो ये नाथुला चले गए, नाथुला पास, जो इंडिया और चाइना को जोड़ता है, एक आर्मी एरिया में, जहां आर्मी के जवानों को पता चला कि किशोर दा आने वाले हैं, तो सारे जवान बर्फ के ऊपर बैठ गए और उनका वेट करने लगे। और गाना गाने के लिए किशोर दा के लिए लकड़ी का स्टेज बना दिया गया। अब जब किशोर दा स्टेज पर आए तो सब ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, जोर जोर से तालियां बज रही थी, हल्ला हो रहा था, शोर मच रहा था। ये देखकर किशोर दा का मन करा कि कैसे गाऊंगा यार इनके सामने। लेकिन सुनील दत्त ने कहा कि आप घबराइए मत, हम आज ऐसे वैसे नहीं गाएंगे जैसे पड़ोसन में गाया था, आप मेरे पीछे खड़े हो जाइएगा और गाना मैं लिपसिंग करूंगा। तो साहब इस बात पर किशोर दा राजी हो गए। अब दत्त साहब आगे खड़े हैं माइक के सामने और किशोर दा उनके पीछे। और जैसे ही किशोर दा मूड में आए, दत्त साहब ने पीछे मुड़कर देखा कि दादा आंख बंद करके मस्त गाना गा रहे हैं, तो वो तुरंत ही वहां से हट गए और फिर सबने जोर से तालियां बजाई। जब किशोर दा ने आंख खोलकर देखा तो एक बार तो वो दंग रह गए, लेकिन फिर माहौल को रंगीन बना दिया जैसे वो स्टूडियो में बना देते थे। और इसके बाद तो किशोर दा ने कई सारे लाइव कॉन्सर्ट्स किए और इतना क्राउड जुटता था उनके इन शोज में कि क्या कहें। देखने लायक होती थी वो भीड़ भी और उसकी दीवानगी भी, जो किशोर दा के दीवाने थे। मैं भी किशोर दा का एक दीवाना हूं और उन्हीं के कुछ और नगमे आप तक पहुंचाना मेरा काम है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। समर मेरा नाम है, लौटता हूं इन गानों के बाद। कीप लिसनिंग।

0: Looking for the perfect reason to buy jewelry? Well, this National Day, Joyalukkas gives you not one, but two compelling ones. Enjoy 9% GST absorbed on diamond jewelry and 30% off gold jewelry making charges. Beautiful designs, incredible value. Joyalukkas, the world's favorite jewelers. Now presenting One Nation Infinite Brilliance. Offer valid till 10th August only. Visit 412 320 and 134 Serangoon Road. Wishing one and all a happy and bright National Day. The Joyalukkas way.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: are tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
3: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर और ये है लेजेंड्स फिर से, जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। भाई अब इसे 24 घंटे 7 दिन सुन सकते हैं आप। आज हमने बात की किशोर दा के बारे में। किशोर कुमार, जिन्होंने लोगों की सोच बदल दी। लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी गाया जा सकता है। उस तरीके से किशोर कुमार गाते थे, एक नया अंदाज उन्होंने क्रिएट किया और वो एक इतनी लंबी लाइन खींच गए कि उसकी बराबरी करना इम्पॉसिबल है अब किसी के लिए भी। हर कोई उनका फैन था, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, और आज भी है। किशोर दा जितना ऊपर से मजाकिया थे, उतने ही अंदर से वो संजीदा थे। बड़े गंभीर किस्म के इंसान थे, लेकिन एक बेहद कमाल के कलाकार थे वो। जहां उनकी प्रेजेंस होती थी, वो वहां के शहंशाह हो जाते थे। उनके न सिर्फ दर्शक या उनके गाने सुनने वाले फैन थे, बल्कि उनके साथी एक्टर भी उनके फैन थे।
2: किशोर दा एज एन एक्टर तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, एज ए सिंगर भी उस आदमी में इतना रेंज था, लेकिन सुनने में इतना आनंद आता था, चाहे वो कॉमेडी सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो,

और किशोरदा की एक और खास बात थी, कोई भी एक गाना जिसे दो आर्टिस्ट ने गाया हो, जैसे मेल फीमेल या दोनों मेल हो, वहाँ किशोरदा का गाया हुआ गाना ही ज्यादा पसंद किया जाता था। फिर चाहे वो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं हो, या फिर प्यार का मौसम का तुम बिन जाऊं कहां। एक किस्सा शेयर किया था जावेद साहब ने, सागर फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड होना था, गाना था हो यूं ही गाते रहो मुस्कुराते रहो। अब इस गाने के रिकॉर्डिंग से पहले किशोरदा को हार्ट अटैक आ गया था, तो कमल हासन की आवाज थे बाला सुब्रमण्यम, तो उनकी आवाज में गाना रिकॉर्ड कर लिया गया। और जावेद साहब बताते हैं कि बाला साहब ने बेहद ही कमाल का गाया। जावेद साहब सोचने लगे कि किशोरदा इससे बेहतर गा पाएंगे या नहीं, और तबीयत भी खराब है। खैर कुछ दिनों के बाद किशोरदा आए और उन्होंने गाना रिकॉर्ड कर दिया, और जब गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया, मिक्स हो गया, तब सबने सुना

अब सबने ही कहा कि किशोरदा किशोरदा ही है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है। तो ये था आज का किशोरदा स्पेशल आपके लिए। किशोरदा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सबके दिलों में आज भी हैं, अपने टैलेंट से कल भी रहेंगे। ये कलाकार की जिंदगी है जो उसके जाने से खत्म नहीं होती है, उसके फन के ये कतरे यहाँ बिखरे हुए हैं और ये हमेशा उसको जिंदा रखेंगे। किशोरदा को सलाम। और ऐसी किसी एक और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करूंगा जो लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या सिंगर होंगे, जिसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा वेट। अभी दीजिए जाने की इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाइएगा, मुस्कान बनकर किसी के चेहरे पर सज जाइएगा और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मैं मिलूंगा आपसे यहीं पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहां चार यार, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहां चार यार,

को कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

फिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले ही डूब गए, प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

0: चलो।
1: जादू है, नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात।

स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: Oh, I hate making love songs.
1: जादू है नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
2: रात अकेली है जोश में रहो।
3: One, two, three, four.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: आग कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें, कहीं आग आग कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम कभी मौन हो तुम, कौन हो तुम?

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर भोला चेहरा हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

उसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग।

तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live Fan.
1: गुड मॉर्निंग। 7 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 4 मिनट। रेडियो मस्ती 24/7 मैं हूँ अंतराब के साथ। यहाँ पर बिल्कुल टाइम से पहुंच चुके हैं भाई। ट्यूसडे मॉर्निंग है बट समहाउ इट फील्स लाइक मंडे, डजंट इट टू अ लॉट ऑफ पीपल। भाई कल तक तो लॉन्ग वीकेंड का मूड था, नेशनल डे के सेलिब्रेशंस, थोड़ा वो एक्स्ट्रा स्लीप, आउटिंग्स, वेकेशन प्लान्स, मे बी एब्सोल्युटली नो प्लान्स एज वेल, जो भी आपका वर्जन फॉर दैट गुड लॉन्ग वीकेंड था। एंड देन दिस मॉर्निंग अलार्म वेंट ऑफ एंड रियलिटी वॉज लाइक एलो जी, रूटीन याद है, वापस से अपनी जो है असल जिंदगी में, वेलकम बैक। बट यू नो व्हाट, मे बी गेटिंग बैक टू रूटीन इजंट सच अ बैड थिंग ईदर, लगता नहीं है। हॉलीडेज जो है बेसिकली गिव्स अस दैट मच नीडेड पॉज, बट समटाइम्स रूटीन गिव्स अस दैट मोमेंटम। वो फेमिलियर सा मॉर्निंग रश की यू नो कॉफी या चाय इन हैंड एंड चेकिंग योर मैसेजेस, फिगरिंग आउट व्हाट नीड्स टू बी डन फर्स्ट, स्लोली इंजन जो है वो वापस से स्टार्ट होने लगता है। सो टुडे मे बी लेट्स नॉट एक्सपेक्ट आवर सेल्व्स टू जंप स्ट्रेट आउट ऑफ द हॉलीडे मोड इन टू अ सुपर प्रोडक्टिव ह्यूमन ऑफ द ईयर मोड। थोड़ा सा टाइम देते हैं अपने आप को, लेट्स स्टार्ट ईजी, one task at a time, one chai ya coffee at a time or juice at a time. Aur agar man abhi bhi weekend pe atka hua hai, usko bhi thoda sa pyar se apne apne routine mein dal dijiye. Yahan pe Salma aa chuki hai. Good morning my dear Salma, and Sapna aunty bhi tune in kar chuki hai. Yeah, and she's saying I think Ramesh is the happiest that it's back to work. I think

वही मैं बोल रही थी. There are a lot of people who are like, चलो अभी ब्रेक जो है हो गया, गेट बैक टू रूटीन. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, लेट्स स्माइल, लेट्स शो अप एंड लेट्स गेट दिस शॉर्ट वीक रोलिंग. दैट्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट इट. गुड मॉर्निंग एवरी वन. ये है मस्ती का मंत्रा, मैं हूँ आंत्रा. एंड येस, यहाँ पर शुरू करते हैं अपने खूबसूरत गानों का और बातों का सिलसिला. गुड मॉर्निंग.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
6: 7:17 रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा आपके साथ। गुड मॉर्निंग, दैट इज राइट, मस्ती का मंत्र चल रहा है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट लकी अली सेड रिसेंटली, यू नो देयर आर सम पीपल जिनकी आवाज इटसेल्फ मेक्स यू स्लो डाउन फॉर अ मोमेंट, एंड आई थिंक लकी अली इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। आप उनको बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं कह सकते, समवेयर इन बिटवीन, एंड इट्स अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ फाइंड। लकी अली साहब की आवाज भी इज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ फाइंड, राइट? सो हाल ही में उन्होंने एक बहुत एक कॉन्सर्ट किया, एंड ही सेड समथिंग दैट हैज बीन डूइंग राउंड्स ऑनलाइन, इट ऑल्सो मेड मी थिंक फॉर अ वाइल। सो टॉकिंग अबाउट ऑल द लव ही रिसीव्स फ्रॉम पीपल, बहुत ही कामली उन्होंने कहा दैट वन डे आई हैव टू गो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर इट, बट आई एम प्रिपेयर्ड। And then he shared that whenever he travels, he carries his ihram, which he described as the cloth he wishes to be buried in. अब सुनने में perhaps it sounds very little heavy Tuesday morning के लिए, but strangely, मुझे इसमें sadness से भी ज्यादा there is a feeling of acceptance in it, don't you think so? Because we spend so much of our lives preparing for everything, right? Next meeting, next holiday, future, retirement, next big goal. But there are some realities of life that we simply don't like thinking about. And perhaps being aware that जिंदगी अपनी काफी limited है, doesn't have to make, you know, life gloomy. Sometimes it can do exactly the opposite. It can make the ordinary things feel a little more valuable, right? So well, Lucky Ali jo hai, I think he is that kind of a person. Now इनके concerts भी बहुत ही ज्यादा, you know, उस तरह के होते हैं कि पेड़ के नीचे जो है उन्होंने कह दिया है कि सब यहीं पे इकट्ठा हो जाओ and we'll do the concert over here itself. And that's it. Maybe that's enough for him. And yeah, this is also a way of life. This is how there are people who are living their lives. Is there a perfect way to live it? No. Har kisi ka apna apna rasta hota hai, right? Wow. These kind of things always put me into deep, deep thought. You always have these kind of conversations somewhere at the back of the mind, or kabhi kabhi apne doston ke saath, apni family ke saath, but then it never gets deeper. We never get deeper into it, isn't it? Well, talking about Lucky Ali, I just want to listen to this gana, hai na? Chahe iska music ho, chahe isme Lucky Ali ki awaaz ho, I think just both of them does magic. And I want it to keep this magic alive forever through his voice. Yes, let's go.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.

गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, अंतरा बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ मस्ती का मंत्र चल रहा है। एंड सिंगापुर लुक्स लाइक देयर इज वन थिंग वी डेफिनेटली डिड नॉट इनवाइट पोस्ट हमारा नेशनल डे वाला लॉन्ग वीकेंड एंड दैट्स द हेज आई एम टॉकिंग अबाउट। NEA जो है उन्होंने कहा है द रिस्क ऑफ हेज अफेक्टिंग सिंगापुर कुड इंक्रीज इन द कमिंग वीक बिकॉज ऑफ कंटिन्यू ड्राई कंडीशंस जो है इन द रीजन। हॉटस्पॉट्स एंड स्मोक प्लूम्स जो है दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड ओवर पार्ट्स ऑफ सुमात्रा एंड कलिमांटन and depending on hawa ka rukh kis taraf hoga and whether those fine fires continue, some of that smoke haze could make its way towards Singapore. In fact, on Sunday jo afternoon 24 hour ka jo PSI hai in the central Singapore reached 81, which is still in moderate range. So the unhealthy range begins when the 24-hour ka PSI goes above 100. Singapore ki jo 28 agency haze task force is also ready to activate apna action plans agar conditions aur deteriorate hote hain. Up well, of course, haze time, we need to like add one more thing to check, which is PSI. Looking outside the window, ki ye cloudy hai ya kuch aur hai? So for now, anyways, no need to panic. NEA jo hai, wo keh rahe hai, wo monitor kar rahe hai situation ko closely and for what the air is like right now, we should look at the current 1 hour PM2.5 ka reading. So well, thoda bas aware rehne ki zarurat hai, baaki updated to hum aapko rakhte hi hain saath saath mein on Radio Masti 24/7 live. Well, gaane ka update Farhan Akhtar coming up next, Dil Dhadakne Do ka title track ke saath on Radio Masti 24/7. Good morning.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: क्रिशिवल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: ओ माय गॉड, अक्षय कुमार भाई, ये वाला मौका तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो गया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ। यहाँ पर 7:47 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, एंड मुझे ऐसा क्या पता चला है, आई थिंक इस वीक या पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था दैट दिस मूवी विच हैज बीन अनाउंस्ड, विच इज बर्मन दा, यानी कि पंचम दा के ऊपर बायोपिक जो है बनाने की सोची जा रही है। एंड यस, फरहान अख्तर को रोल किया गया है इस चीज के लिए, बट हैविंग सेड दैट उसमें अक्षय कुमार का रोल, विच वॉज केप्ट लाइक अंडर द रैप्स एंड इट वॉज लाइक वेरी मिस्टीरियस, कुछ तो उनका एक काफी इंपॉर्टेंट जो है इसमें रोल दिखाया जाएगा। नाउ इट हैज बीन कंफर्म्ड, भाई अक्षय कुमार को 10 दिन दिए गए हैं टू शूट आर डी बर्मन का बायोपिक, वेयर ही विल बी सीन एज सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। यस, अक्षय कुमार इज गोइंग टू प्ले हिज अपने ही ससुर जी, यानी कि फादर इन लॉ एंड सुपरस्टार राजेश खन्ना इन आर डी बर्मन का बायोपिक, लेड बाय ऑफ कोर्स फरहान अख्तर एंड नीरज पांडे जो है इसको बना रहे हैं। एंड द शूटिंग बिगिंस इन सितंबर 2026 एंड आई एम नाउ रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी। एक तो द रिलेटिविटी लेवल जो है इन सभी से इतना ज्यादा है कि इट मेक्स यू इवन मोर अ स्टेप मोर क्यूरियस। राजेश खन्ना साहब को हमने देखा है, उनकी मूवीज आज भी यू नो दे लुक सो नाइस, ही हैज बीन लेजेंड फॉर अ रीजन। एंड देन प्लेइंग अपने ससुर जी को ही ऑन स्क्रीन, आई थिंक व्हाट एन ऑनर ए, एंड बी आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू लुक इवेंचुअली ऑन स्क्रीन। वाह, लाइक सीरियसली, मैं पहले यही नहीं इमेजिन कर पा रही थी कि फरहान अख्तर जब पंचम दा के किरदार में उतरेंगे तो आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू लुक, बट देन दिस इवन मेक्स मी मोर इंटरेस्टिंग, बट वेल कंप्लीटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। भाई लाओ लाओ अच्छी अच्छी मूवीज, अच्छा अच्छा कॉन्टेंट खूब सारा लाओ हमारे लिए, सो दैट वी कैन वॉच एंड रियली रियली हैव अ गुड टाइम। नहीं, मैं तो हमेशा आई एम ऑलवेज होपफुल विद एवरीथिंग मोस्टली। वेल कमिंग अप इज अ ब्यूटीफुल गाना अरिजीत सिंह की आवाज, टाइटल ट्रैक ऑफ कलंक फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।